अभी संभल जाइए भाई, मत आने दीजिए जीवन में वो कठिन समय। पकड़िए प्रभु के चरण। संसार को अपना समझने की भूल हमसे आज तक हुई है, और ये जितना दुख जीवन में है ये उसी भूल का परिणाम है। और मैं साथ साथ कहता चलूं, लड़ झगड़ मत पड़ना किसी से, बस केवल इस बात को समझ लेना, संसार में जितनी आशा है, अच्छा आशा अपने से ही तो होती है, पराए से कोई आशा नहीं है, पराए से कोई आशा नहीं है। और संतों का सिद्धांत है, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। कई बार आपसे मैंने कहा, भाई संसार से सुख की आशा का नाम ही दुख है, और सुख की आशा किससे होगी? जिसे आप अपना समझेंगे। एक बार अपना प्रभु को समझ कर देखिए, सुख की आशा पूर्ण हो जाएगी, सदा सदा के लिए पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए व्यास जी ने समझाया था, व्यास राधिका रमण बिन कहूं न पायो सुख।

तन बलहीन हुआ, बुद्धि कार्य नहीं करती, दो पग चलने के लिए भी मैं आश्रित हूं, झूठे कुटुंबी के रंग भीनो और सांचे प्रभु सो चित नहीं दीनो। जो वस्तुतः अपना था, जो जन्म जन्म का साथी है, उसके चरणों में कभी चित्त नहीं दिया और बस इसी झूठे संसार के रंग में रंगा रहा। रोगी कह रहा है कहां लग कहूं मूर्खता अपनी, अब मैं अपनी मूर्खता कहां तक कहूं। ढक लिया जैसे जैसे माया ने मेरे मन बुद्धि को, आवरण पड़ गया मेरी मेरी बुद्धि पर और मैं सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाया, मैं सही समय पर सही दिशा में पग आगे नहीं बढ़ा पाया। नयन गए और श्रवण हूं और गए मुख दंत।

अनंत बुद्धि घटी तन गति लटी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, तृष्णा को नहीं अंत। अच्छा, एक ये भूल भी न करना कि आपको लगे कि वृद्धावस्था आने पर विषय से अरुचि हो जाती है। महाभारत में भीष्म पितामह शरशय्या पर पड़े युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे रहे हैं और उस समय महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, विषय की वासना यौवन के काल में इतना पीड़ित नहीं करती जितना वृद्धावस्था में करती है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि पितामह, ये आप क्या कह रहे हैं, जब जब शरीर अशक्त है तो विषय में रुचि कैसे होगी। बहुत लोग ऐसा प्रयास करते हैं, भोजन कम कर देंगे और जाने कई कई साधन करते हैं कि मन से विषय की रुचि घट जाए। रसबल छूटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। हरि के भजन के अतिरिक्त मन को विषय से हटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। कोई साधन कुछ नहीं कर सकता, अंत में सब असफल हैं। तो महामहिम कह रहे हैं कि धर्मराज, मेरे जीवन का अनुभव है, वृद्धावस्था आने पर तृष्णा और बलवती होती है। और अधिक दुखदायी स्थिति क्या होती है कि युवावस्था में तन में और मन में बल और शक्ति रहती है, इंद्रिय निग्रह करना सरल है, लेकिन वृद्धावस्था में तो तन अशक्त हो जाता है, बुद्धि कार्य नहीं करती। और कभी कभी कभी कभी व्यक्ति इस बढ़ी हुई तृष्णा के कारण दुस्सह दुख पाता है। इसलिए स्वयं को सुधारने का, स्वयं को संवारने का, और मैं कहूँगा स्वयं को सजाने का जो श्रेष्ठ काल है वो यौवन का काल है। युवावस्था में तो श्रृंगार अच्छा लगता है, बहुत छोटा सा बालक श्रृंगार करे तो भी अच्छा नहीं लगता, वृद्ध श्रृंगार करे तो भी संसार उपहास करता है। श्रृंगार कब अच्छा लगता है, जब युवावस्था होती है। ऐसे ही भक्ति क्या है, ये उर अंतर का श्रृंगार है, भक्ति जीवात्मा का श्रृंगार है। तो जब तन पर यौवन हो उसी काल में भजन करिए, उसी काल में हरि की भक्ति करिए। मैं तो कई बार कहता ही हूं ना आपसे कि भक्ति जीव को सताती नहीं है, भक्ति जीव को सजाती है, वो श्रृंगार कर देती है जीव का, अनेक अनेक सद्गुणों से वो सुसज्जित अलंकृत कर देती है जीव को, प्रभु के मिलन के योग्य बना देती है। पर मैं फिर कहूंगा भाई, सही निर्णय तभी वस्तुतः सही है जब वो सही समय पर लिया जाए। भजन तो करना है पर देर से नहीं करना है, देर ही अंधेर है। भजन के मार्ग पर देर ही अंधेर है। भजन करना है, आज करना है, अभी करना है, मन लगे तो भी करना है और मन लगे ना लगे तो भी करना है। भजन करना है, केवल भजन के लिए भजन करना है। ये भूला बिसरा जीव प्रभु के सन्मुख हो जाए, प्रभु से संबंध जुड़ जाए, प्रभु के चरणों से तन मन की गति रति लग जाए, इसलिए भजन करना है। प्रभु अपने लगने लगे इसलिए भजन करना है, प्रभु मीठे लगने लगे इसलिए भजन करना है। टूटी खाट न छाड़ी भावे, सुत के सुत

और बहुत लोगों से मैंने सुना है भाई, वो कहते हैं महाराज मरने से डर लगता है, हमको मरने से बड़ा डर लगता है। टूटी खाट न छाणी भावे और सुत के सुत नातीन खिलावे, लेकिन ये सब करने के बाद भी तृष्णा को नहीं, अंत संसार का विषय ऐसा है उस स्पर्श करते ही बढ़ने लगता है और फिर बढ़ता ही चला जाता है। विषय के सेवन से कभी विषय से अरुचि नहीं होगी भाई। ये सब बात मैं समेट कर एक पंक्ति में कह दूं, विषय का सेवन करने से विषय से अरुचि नहीं होगी, विषय के त्याग से ही विषय से अरुचि होगी। ये आप आज समझ लें या कभी समझिएगा। आप सोचें कि आज सेवन कर ले कल दूर हो जाएंगे, कल कभी नहीं आएगा। विषय के सेवन से विषय में रुचि बढ़ती है। अग्नि में घी डालो तो अग्नि प्रज्वलित ही तो होती है,

तो फिर ना करके ही दुख पा लेना चाहिए। कम से कम उस ना करने की अवस्था में आप तो अपने साथ होंगे, आपका आत्म बल तो उस समय बना रहेगा। दुख तो है, और संसार में सुख की आशा लगाना ही बड़ी मूर्खता है, तो दुख ही दुख है भाई। मैं तो इसलिए आपको बीच बीच में कह देता हूँ, स्मरण करा देता हूँ कि साधन का पथ है भाई बड़ा कठिन है, खरोई कठिन है भजन डिंग डरिबो। संसार सरल है, विषय का सेवन बड़ा सरल है, खूब आनंद आता है थोड़ी देर के लिए तो, लेकिन संसार का विषय का सेवन करते करते कब जरा जीर्ण हो जाती है ये देह, कब चेहरे पर झुर्रिया आ गई, कब बाल सफेद हो गए, रोज देखते थे आप दर्पण में, देखते ही देखते ये झांकी हो गई, और अभी आगे जाने और क्या दिखाई पड़ेगा, नैन गए और श्रवण हूं और गए मुख दंत। हमारे वृंदावन में एक संत थे, भजन करते थे, बड़े विनोदी स्वभाव के थे, युवावस्था में ही आ गए थे, बड़ा सुंदर उनका दर्शन था, वृंदावन में रहकर भजन किया। वृद्धावस्था आई तो आते जाते कोई भी बाबा बाबा कहकर चले जाता था, तो हंसते हुए कहते थे, बाल सफेद देखकर कहते थे, बोले केशव केसन अस्करी जो अरिहु न कराही, बोले इन श्वेत केशों ने तो हमारे साथ में वो किया है जो शत्रु भी नहीं करता। बोले केशव केसन अस्करी जो अरिहु न कराही, किसी ने कहा बाबा ऐसा क्या कर दिया इन केशों ने, बोले अरे चंद्रमुखी मृगलोचनी और बाबा कह कह जाए। तो भाई देखते ही देखते ये स्थिति आ जाएगी। मैंने तो कहा ना कि जैसा जल वो कूप में वैसा बाहर आए, महात्मा खींचे तो भी उसमें से वही आएगा, दुरात्मा खींचे तो भी वही आएगा, तन की गति तो भाई वही होनी है, वही होगी। इसलिए काल चुरैया चुग रही, और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज तो कहते हैं अरे भूले भूले कोई भूले, तुम जिन भूलो मालाधारी। व्यास जी ने कहा मूंड मुंडाए कि लाज नहीं भइए, आपको तो वैष्णव वेश मिला है, हरि का नाम मिला है माथे पर, ये हरि मंदिर है, गले में तुलसी की कंठी है, हाथ में जप की माला है, तुम जिन भूलो मालाधारी, बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान।

और यह रुचय मुख नाम ना आवे, जैवो जम के घर ही भावे। और उसमें दुर्दशा में दुर्दशा क्या है कि पीड़ा पा रहा है मन, पर फिर भी रुचता संसारी है, फिर भी इच्छा संसार की है। अभी मैं आपसे कह रहा था ना, छोड़िए एक बार मन को, छोड़ दीजिए, देखिए मन कहाँ जाता है, सहज में मन किस ओर जाता है, सहज में मन संसार का स्पर्श करता है कि नहीं, ये देखिए और देखते रहिए। रोगी यही देख रहा है कि मैं इतना दुख पा रहा हूँ, देख लिया संसार का हर रंग कच्चा है, झूठा है, पर इतना होने पर भी कैसी माया ने मेरी मति फेरी है, कैसी मेरी मति भ्रमित हुई है कि यह रुचय मुख नाम न आवे, तो भी संसार रुचता है पर मुख में हरि का नाम नहीं आता, मुख में हरि का नाम नहीं आता। और जैवो जम के ही घर भावे। सुनता हूँ शास्त्रों पुराणों की कथाएं, सुनता हूँ कि अंत में जम के घर जाना पड़ेगा, पर जम के घर जाना तो ठीक है लेकिन संसार नहीं छोड़ना है, ऐसी मन की दुर्दशा हो गई है। और ये आपकी मेरी भाई हम सबकी कहानी है, ये आपकी मेरी हम सबकी कहानी है। एक बात गांठ बांध लीजिए, आज भजन नहीं किया कल कभी आएगा नहीं, कल कभी नहीं आएगा। भजन आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और मैं तो आपको एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि अरे कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए।

बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, देखिए उनका स्वभाव कैसा है। रंच प्रेम में अपन पो हरत नवल किसो। श्री ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, राई के दाने जितना कोई उनका भजन कर ले उसे अपना बना लेते हैं। राई के संभजन को मानत मेरु समान। और सही कहते हैं संत भाई, अस प्रभु छाण भजही जे आना। ऐसे प्रभु को छोड़कर कोई संसार का भजन करे तो ते नर पशु बिन पूछ समाना। और कल एक और बात मैंने आपसे कही थी, विवेकहीन पशुवत है पर एक प्रकार से पशु से भी गया बीता है। मनुष्य अगर विचार नहीं करता तो वो पशु नहीं है, पशु से गया बीता है। क्योंकि पशु में तो विवेक की संभावना नहीं है, आप में तो संभावना है, आप में तो संभावना है। तो मनुष्य यदि भजन नहीं करता है, मनुष्य यदि आत्म कल्याण का प्रयास नहीं करता है, मनुष्य यदि विवेक युक्त होकर विचार नहीं करता है तो वो पशुवत नहीं है, वो पशु से भी गया बीता है। पशु पंछी ताको समय मानत अपनो राई। मन लागो अति झूठ सो तज साच ही सुख मूल। मन लग गया इस झूठ में, अब क्या करें, अब हटाए हटता नहीं। और ये सरल नहीं होगा भाई, आज तो आप में बल है, शक्ति है, सत्संग में जा सकते हो, दो घड़ी बैठकर भजन कर सकते हो, ग्रंथ का पाठ कर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, आने जाने में स्वतंत्र हो। कल जब निर्भर हो जाओगे, कल जब आश्रित हो जाओगे और कुछ जीवन में नहीं रहेगा, तब आपको लगता है भजन हो पाएगा। कितना क्षणभंगुर ये देह है,

इसीलिए कहा है हरि का नाम रटले री रसना फिर अंत समय ये हिली ना हिली। अरे नेक सी पीड़ा कहीं तन में हो जाए सब भजन साधन छूट जाता है, सब भजन साधन छूट जाता है। नेक सत्तन में कष्ट हो मन में कष्ट हो, इसलिए आज ये सुख का जो समय है इसका लाभ लीजिए। ये सुख सदा के लिए आपके पास रह जाए, आपके निकट रह जाए, इसका सदुपयोग करिए। भजन करिए और कब करिए? आज करिए, अभी करिए, यहीं से आरंभ करिए। और छाण सुधा के सुख फल ही जाए गही विष शूल, ये विष के फल मैंने खाए हैं और जो

और जैसे जैसे तन जीर्ण हुआ वैसे वैसे लोभ का रोग और बढ़ता चला गया। युवावस्था में तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, लड़ लेता है शरीर रोग से, वृद्धावस्था में तो वो भी नहीं रहता। ये पूरी चर्चा का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे तन, संसार तो यही सिखाता है ना भाई, ये कोई अवस्था है भजन करने की, जब समय आएगा तब भजन करेंगे। संसार तो यही शिक्षा देता है, संसार तो यही सिखाता है, संसार तो कहता है मन लगाकर काम करो, संसार की शिक्षा तो यही है भाई, मन लगाकर काम करो। हमारा काम मन लगाकर करो, हमारे काम में कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए, हमारा काम करो, समय पर करो, मन लगाकर करो, यही संसार की सीख है। पर भाई संत सिखाते हैं मन लगा के हरि का नाम लो, संसार का काम बुद्धि लगा कर करो, माने जितनी आवश्यकता है उतना कर दो, उसके साथ बहुत लिपटने चिपटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बुद्धि का प्रयोग करिए, इन संतों की बात को सुनिए, फिर मनन करिए, चिंतन करिए, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या तात्पर्य है इनका, बुद्धि का प्रयोग संसार में करिए, निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना करिए, पर मन लगाकर हरि का नाम लीजिए। यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहू कौन है सचु पाए। राज महाराज जी ने आज के प्रसंग के बिल्कुल अनुकूल ये पंक्तियां मुझे लाकर दी हैं, और मैं चाहूंगा ये बड़ा सुंदर श्री चाचा वृंदावन दास जी का पद है, आप सब साथ साथ गाना।

और आपके हाथ में जो वाणी है उसके बिल्कुल अंतिम पृष्ठ पर चार पंक्तियां लिखी है श्री ध्रुवदास जी की हैं, प्रार्थना की है युगल चरणों में। सत्र का विश्राम इन्हीं पंक्तियों से किया करेंगे।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिएं। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता।

0: शंभु शंभु शंभु शिवा महादेवा
1: शिवा महादेवा।
0: और रेडियो महारानी भी सुनते रहिए क्योंकि उसमें काफी हटके चीजें आती है, इसीलिए उनका टैगलाइन भी कुछ हटके है।

0: powerful leadership tool you have is your own personal example. You are listening to the thoughts of Mr. Sonu Sharma, who is a life coach and motivational speaker. Keep listening, Radio Maharani, Kutch, Hatke.
1: हमने कुछ किया पूरी दुनिया के अगेंस्ट जा करके, या अपना कोई डिसीजन लिया कि मुझे ये सही लग रहा है, लोगों ने मना भी किया फिर भी हमने किया और उसमें हम फेल हो गए। अब वो बार बार हमको अपना वो फेलियर याद आ रहा है, नहीं भी आ रहा तो दुनिया हमको याद दिला रही है आ करके, है ना। जैसे हम कुछ और करने के बारे में सोचते हैं तो लोग हमको वाला फेलियर याद दिला देते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं है, वो देख पहले भी तूने किया था, क्या हुआ। तो बाहर से भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और अंदर भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है। चलो बाहर से जो अटैक हो रहा है उसको तो आप फिर भी हैंडल कर सकते हो, उनसे लड़ लो झगड़ लो, तो वो भी कहेंगे यार क्या लड़ाई झगड़ा करना है, छोड़ो बात मत करो इनसे इसके बारे में। बट अंदर जो अटैक हो रहा है उसको कैसे हैंडल करें, राइट। सारा खेल यही है कि हमारे अंदर हर वक्त कई तरह के अटैक्स चलते रहते हैं, उससे कैसे बचोगे। आप चाहे पहाड़ पे चले जाओ, चाहे मूवी देख लो, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ देर के लिए आप उसको भूल सकते हो, ठीक है ना। दारू पी ली, कुछ देर के लिए भूल गए, फिर याद आ जाएगा। जैसे होश में आओगे फिर से याद आ जाएगा, सारी बातें दिमाग में घूमने लग जाएंगी। तो खुद से कैसे बचे, समझ रहे हो। यहां पे जो लिखा हुआ ना सेल्फ रिफ्लेक्शन, इसका मोटिव यही है कि मेरे सारे सेशंस का एसेंस क्या है। ये नहीं है कि बाहर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर जो हमारे गड़बड़ हो रही है उसको कैसे हैंडल करना है, अंदर जो अटैक्स होते रहते हैं थॉट के लेवल पे हमारे ऊपर उसको कैसे फेस करें। क्योंकि अगर आप उसको फेस कर गए तो बाहर आपके लिए फेस करना क्या बड़ी बात है, समझिए ना। और एक्चुअल में बाहर कोई अटैक होता नहीं है, होता अंदर ही है। बाहर अगर कोई आपको कुछ बोल भी रहा है तो अल्टीमेटली चॉइस आपके हाथ में है कि उसका असर आपके ऊपर हो या ना हो, अगर इस बात को हम समझ पाए तो। आप चाहो तो अपने मन में बोल दो अरे ये तो है ही ऐसा, समझ गए, असर होना बंद। आपको नहीं इसने ऐसा क्यों बोला, तो असर ज्यादा होगा। जैसे कोई अगर कोई आपको पता है कि कोई पागल है, वो आकर के आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा, तो क्या उसके उसके बारे में आप बैठ करके सोचोगे 10 दिन तक कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो किसी का बेसिक नेचर है उल्टे सीधे काम करना, या उल्टा सीधा आपको बोलना, या आपको तंग करना। तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है उसका बेसिक नेचर है, कोई बात नहीं, तो जैसे आप अंदर से बोल देते हो ना कोई बात नहीं, ये क्या फर्क पड़ता है, उसका जो नेचर है उसका है, मेरा जो नेचर है मेरा है, तो उसका असर आपके ऊपर होना बंद हो जाता है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, बट ये एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है। जो आंसर है वो ये, डू यू पीपल वॉन्ट कि इस क्वेश्चन को मैं टच करूं डीपली, कि हमसे कोई गलती हो गई, अब वो गलतियां क्या हो सकती है। गलतियां हो सकती है रिलेशनशिप से रिलेटेड, ये तो बहुत ज्यादा हो रही है आजकल गलतियां फेसबुक से गलतियों की शुरुआत होती है, फिर पता नहीं गलतियां कहां की कहां पहुंच जाती हैं, है ना। अब वो रिलेशनशिप खत्म हो गई, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो तो आपको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है। ऐसे ही होता है ना कि मैंने ये कैसे कर दिया, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूं, मैं कितनी बेवकूफ हूं, ऐसी सी चीजें आती है माइंड में। हाँ, कि मैं तो समझ नहीं पाती हूँ चीजों को। नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि समझ एक दिन में डेवलप नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। कोई माँ के पेट से समझदार नहीं निकलता है, राइट। जब ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे और उन एक्सपीरियंसेस से आप सीखोगे तभी तो आपको समझदार कहेंगे। जिसकी लाइफ में जितनी ज्यादा गड़बड़ हुई होगी और अगर उसने उससे सीख लिया है तो वो उतना ही समझदार है। विजडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फेलियर्स एंड सेटबैक्स एंड योर पावर ऑफ ओवरकमिंग इट। इसको ध्यान से समझ लो। तो जो भी गड़बड़ हुई है आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, उसको पहले तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है गड़बड़ हुई है, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। तो हो सकता है आपको जवाब मिले कि कहीं मैंने कमिट करने में जल्दीबाजी तो नहीं कर दी थी इस रिलेशनशिप में, मे बी कि 4 दिन की रिलेशनशिप थी और मैंने फटाफट से डिसीजन ले लिया। तो इससे आपने क्या सीखा कि अब जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, स्पेशली बड़े डिसीजंस तो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। कौन सा कपड़ा खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है तो आप जल्दी में भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-20 रुपए महंगा भी खरीद लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम क्या है वहां पर पूरा टाइम लगाते हैं। 10 दुकानों में जाएंगे, ट्राई करेंगे, ₹100 के पीछे पता नहीं कितनी किचकिच करेंगे, ₹100 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, ₹20-20 के पीछे कितनी किचकिच करेंगे। और लाइफ के जो बड़े डिसीजन है वो कैसे लेते हैं हम? बहुत सारे लोग तो लेते ही नहीं है, उनके लिए वो डिसीजन कोई और ले लेते हैं, करियर का डिसीजन, रिलेशनशिप का डिसीजन, ये वो लेते हैं तो जल्दी में ले लेते हैं, होता है ना। स्पेशली हमारे इंडिया में बड़ा चलता है इसको अरेंज मैरिज बोलते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट अरेंज मैरिज, इट इज अ वेरी वेरी वेरी क्या कहूँ मेरी नो कमेंट्स। तो जो भी है, अरेंज मैरिज में क्या गड़बड़ मुझे लगती है, मुझे जो जेन्युइनली बता रहा हूँ जो मुझे गड़बड़ लगती है, वो क्या है कि लड़का लड़की मिले और दोनों तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया, अरे बहुत बढ़िया है, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, तू हाँ कर दे, और उसने हाँ कर दी, ठीक है बढ़िया है, मतलब कि घर वाले जो है उनको बढ़िया लग रहा है या लग रही है। आप तो थोड़ा तो टाइम लगाओ, एक घर खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं, यहाँ कुछ खरीद नहीं रहे हो माना, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसीजन है अपनी लाइफ का, इनफैक्ट सबसे बड़ा डिसीजन है। गाड़ी गलत ले ली तो उसका सोल्यूशन है, कबाड़ी को दे सकते हो, ये पति को किसको कबाड़ी में दोगे। जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो इसको पकड़ के रखो, दिस इज कॉल्ड विजडम। ये मैं कहां से बोल रहा हूं, शायद अगर आज से आप 20 साल पहले मेरे से ये सब बातें करते तो मैं नहीं बोल सकता था ऐसा। मैं क्या कहता, अरे करो करो करो, और पीने वान करा लगा दो बियर लगा, अरे ये करो बाइक ना लटा के मोड़ेंगे, मैंने सारे काम करे, ऐसा नहीं करे, लटाएंगे और कई बार खुद भी लेट गया, और पीछे वाला कहता यार मैंने क्या गलती कर दी, मुझे ऐसे ही ठोकता रहता है, आप समझ रहे हो। तो ये सब काम मैंने करे हैं, तो वो करके मैं अब आपको बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा मत करो, मैं कह रहा हूं समझ लो कि ये करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, कर भी दिया तो उसे सीख लो, ग्रो आउट ऑफ इट। मैं ये नहीं कह रहा गलतियां मत करो, अरे मैंने खुद बहुत गलतियां करी है तो मैं आपको कैसे बोलूंगी गलतियां मत करो, गलतियां करो बट लर्न फ्रॉम इट, सही काम करो लेकिन उसमें चिपके मत रहो कि मैंने पता नहीं क्या उखाड़ लिया, समझ गए, मैंने ये सही काम कर लिया, मेरी फैमिली में और जो लोग हैं वो नहीं कर पाए, व्हाटएवर आपने टॉप कर दिया कहीं पर, तो अपनी ईगो को मत बढ़ाओ, ग्रो आउट ऑफ इट, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। मिल रहा है आपको जवाब, मिल रहा है। एक बार मैं इसको थोड़ा और डीपली टच करता हूं, तो जब भी हमारे अंदर से ये आता है कि हम पुरानी सिचुएशंस के बारे में सोच सोच करके दुखी हो रहे हैं, तो उससे सीखो, गो इन टू द रूट कॉज ऑफ इट, ताकि वो जो गलती आपने करी वो दोबारा मत करो, दैट इज इंपॉर्टेंट। पहली बार, अब देखो कितनी मजेदार चीज निकल के आ रही है बात करते करते, पहली बार अगर आपने लाइफ में कोई भी गलती करी है तो वो गलती नहीं है, समझ गए, अनजाने में करी है तो वो गलती नहीं है, लेकिन उसी गलती को आप बार बार कर रहे हो, ये गलती है। मुझे एक चीज की नॉलेज ही नहीं है और मैंने सही सोच करके किया लेकिन मेरे साथ में गलत हो गया, ये गलती नहीं है। कुछ भी नया करेंगे तो उसमें सही और गलत होने की तो पॉसिबिलिटी रहेगी ना, सक्सेस फेलियर की तो रहेगी ना, तो आप फेल हो गए इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उस फेलियर से कुछ सीख नहीं रहे हो और दुखी हो रहे हो, ये गलती है, ये ब्लंडर है। अपनी गलतियों के बारे में सोच सोच करके आप दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये गलती है। कोई भी गलती आपकी लाइफ की इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपके ऊपर हावी हो सके, हमेशा अपने अंदर इस बात को याद रखना, मेरी लाइफ की जितनी भी बड़ी से बड़ी गलतियां हैं मैं उससे बड़ा हूं, अपने आप को ये बोल, आप कितनी भी बड़ी गलती कर लो ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आपकी गलती को एब्जॉर्ब कर जाए। अगर आप यूनिवर्स के एंगल से देखोगे तो आपकी गलती बहुत छोटी लगेगी जिसको आप बड़ी समझ रहे हो। कोई भी गलती बहुत बड़ी नहीं है, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं है जिसको माफ ना किया जा सके, चाहे फिर वो आपने करी चाहे किसी और ने करी। तो गलतियों से सीखो, सीख करके क्या होगा, आप धीरे धीरे मैच्योर होते चले जाओगे, अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओगे। ये दोनों चीजें तभी होंगी जब आप सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गलत रिलेशनशिप में एंटर करके ये सीखा कि मुझे पेशेंस रखना है लाइफ में, तो क्या छोटी क्वालिटी है? डू यू थिंक पेशेंस इज स्मॉल? मतलब पेशेंस इज सो बिग यार, पेशेंस से आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, सही डिसीजंस ले सकते हो, सही चॉइसेस ले सकते हो, अगर आप में पेशेंस है तो आराम से सोच समझ करके डिसीजन लेना है, ठीक है ना।
2: माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट, हाउ शुड वन मेंटेन मेंटल स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ऑफ माइंड इन सिचुएशंस ऑफ लाइफ एंड डेथ?
1: बहुत भारी सवाल है वैसे तो, बट ये सवाल क्योंकि हर एक को फेस तो कभी ना कभी करना ही है। जो लोग आपके आसपास में जिनको बहुत प्यार करते हो उन्होंने मरना ही। मैं देखो कितने आराम से बोल जाता हूँ, बिकॉज मेरे लिए मैटर नहीं करती। अब ऐसा क्या हो कि आपके लिए भी मैटर ना करे, समझ गए ना? वो इंसान जिससे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, कोई भी हो सकता है, वो मर सकता है ना आज, हम खुद भी मर सकते हैं। तो कैसे अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि इन सब चीजों का भी हमारे ऊपर असर ना हो। ऊपर ऊपर से तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता ऊपर से नहीं होगा, अंदर से नहीं होगा। ऊपर और अंदर का मतलब हमको समझ आ रहा है? देखो इसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा, व्हाट इज आउटर व्हाट इज इनर। आप एक मूवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो और रो रहे हो, तो ऐसा लग रहा है आपके ऊपर भी असर हो रहा है और अंदर भी हो रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो मूवी है। तो आपकी अचीवमेंट्स का भी आपके ऊपर असर ना हो, आपके फेलियर्स का भी आपके ऊपर असर ना हो, दुनिया जो आपके बारे में कहती है उसका भी आपके ऊपर असर ना हो, हेल्थ से रिलेटेड आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए बॉडी में उसका भी आपके ऊपर असर ना हो, ये सब चीजें ऐसी हैं जो होनी होनी है आप लोगों के साथ। अभी हो सकता है समझ नहीं आ रही होंगी, पर जैसे जैसे एज बढ़ेगी धीरे धीरे समझ आएगी ये सारी बातें। उसके अलावा आपके आसपास में अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार हो गया जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तब भी आपके ऊपर असर ना हो, और भगवान ना करे अगर वो इस दुनिया से चले गए उसका भी आपके ऊपर असर ना हो। क्या ये हो सकता है? पहले तो सवाल ये है, क्या लगता है आपको, हो सकता है नहीं हो सकता है? सच बोलो, ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ बोलने के लिए बोलना है। नहीं हो सकता, हो सकता है, हो सकता है। क्यों कह रहे हो कि नहीं हो सकता है? देखो धीरे धीरे अगर आपको ये समझ आ जाए, अगर ये नहीं समझ आया तो नहीं हो सकता। मान लो कि जो मैं आपको बात बोलने वाला हूं, एक बार को मान लो कि क्या पता वो सच हो, मैं सच बोल रहा हूं अपनी तरफ से, लेकिन आपको हो सकता है समझ ना आए, मुझे समझ आ गई है इसलिए मेरे लिए वो सच है। वो क्या है? अब इससे आपको जवाब मिल जाएगा कि लाइफ में बैलेंस कैसे बनाते हैं। बैलेंस का मतलब लोग ये समझते हैं कि हमेशा हम खुश रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे। नहीं जी, रो रहे हो तो खुल के रोना है, ठीक है? दुखी हो रहे हो तो पूरी तरह से होना है, हंस रहे हो तो खुल के हंसना है, जी रहे हो तो खुल के जीना है। गेम है जिसमें मैं एक प्लेयर हूं, मैं गेम खेल रहा हूं, लेकिन जो मैं गेम खेल रहा हूं उसमें जो भी कुछ हो रहा है उसका एक्चुअल मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा है। ये बात अभी हमको समझ नहीं आती है। अगर ये बात हमको समझ आ जाए, जो मैं रोल की बात करता हूं, मैंने अपने हाउ टू कंट्रोल योर माइंड वाले में भी एग्जांपल दिया था, एक रोल का एग्जांपल दिया था कि आप एक रोल प्ले कर रहे हो और आप एक्चुअल में कुछ और हो, तो आपको समझ आए कि मैं हूं कौन और जो मैं एक्चुअल में हूं उसके ऊपर कुछ भी हो रहा है इस खेल में उसका कोई असर नहीं होता है। तो बाहर से देखने में लग रहा होगा कि आपके ऊपर असर हो रहा है, शायद आंसू भी आ रहे होंगे, शायद आप हंस भी रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे, सक्सेसफुल हो रहे होंगे, लेकिन अंदर से यू ऑलवेज बी अनटच्ड। अगर ये नहीं पकड़ में आया तो कोई सोल्यूशन नहीं है ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछोगे तो। क्योंकि क्या होगा, आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये गेम है, लाइफ एक गेम की जैसी है, लेकिन आप इस गेम में सीरियस हुए पड़े हो, तो क्या होगा, आप सही डिसीजंस ले ही नहीं सकते। आपके जो भी डिसीजंस होंगे वो ज्यादातर गलत ही होंगे। क्यों गलत होंगे? जबकि आपकी सलाह सही होगी, आप अपने दोस्तों को सलाह दोगे वो सलाह सही होगी, लेकिन खुद को सलाह दोगे वो गलत होगी। क्यों? मैं बीच में आ गया ना, बस इसको ध्यान से समझ। ये बात पकड़ में आ रही है ना कि जब हम सलाह देते हैं किसी और को तो बड़ी सही सलाह देते हैं, जब हम खुद उस सिचुएशन में होते हैं तो हम बेवकूफों की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने आप को उस सिचुएशन से आइडेंटिफाई कर लिया है। जैसे गेम खेलते खेलते सपोज आप भूल ही गए तो क्या होगा, एकदम से वो बंदा मरा या उसको चोट लगी या उसका पैर टूटा, हड्डी टूटी, तो आप रोने लग जाओगे, चीखने चिल्लाने लग जाओगे। मतलब वो क्या रहा है, हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए उस गेम में, डिटैच होकर के उस गेम को नहीं देख पा रहे हैं। इसको ये कहना भी गलत नहीं होगा, हम भूल ही गए हैं कि ये खेल है, ठीक है ना? खेल में हम बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, लाइफ को एक खेल की तरह देखो। मेरे लिए लाइफ कैसी है, मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे व्हाट डज लाइफ मीन टू मी, मेरे लिए जो बॉडी है ना और जो माइंड है, माइंड मतलब समझते हो कि जो प्रोग्रामिंग है जिसके थ्रू ये बॉडी काम कर रही है, एक सॉफ्टवेयर है एक हार्डवेयर है, क्लियर है ना। जो हमारे थॉट्स है वो सॉफ्टवेयर के जैसे है, बॉडी हार्डवेयर के जैसी है, जैसा सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है वैसी बॉडी एक्ट कर रही होती है। सॉफ्टवेयर निकाल दो बॉडी में से तो बॉडी कैसे एक्ट करेगी, क्लियर हो रहा है ना। तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है एक हार्डवेयर है, तो मेरे लिए लाइफ क्या है, मैं दोनों से ही अनटच्ड हूं, ना तो मैं हार्डवेयर हूं ना मैं सॉफ्टवेयर हूं, मैं इन दोनों को क्रिएट करने वाला हूं। बन गया ना खेल, पहचानना की जरूरत ही नहीं, आप हो, आप इस बोतल से अलग हो, इसमें पहचानने की क्या जरूरत है। आप बोतल को देख रहे हो, बोतल आपको नहीं देख रही है, क्या ये फैक्ट है या कोई इल्यूजन है? फैक्ट है भाई, आप अपनी इस बॉडी को देख सकते हो लेकिन ये बॉडी आपको नहीं देख सकती, ये फैक्ट है या इल्यूजन है? फैक्ट है, तो फैक्ट के बारे में क्या सोचना है, क्लियर हो गया। तो मैं जानने वाला हूं इस पूरे के पूरे खेल को, तो अब इससे क्या होगा, देन यू विल बिकम एन आर्टिस्ट, एक कमाल के खिलाड़ी बन जाओगे आप लाइफ के, लाइफ आपके लिए खेल जैसी होगी, मतलब एक कमाल का खेल। अब खेल क्या है कि किस तरह से इस हार्डवेयर को, मतलब कि इस बॉडी को, और इस सॉफ्टवेयर को, मतलब कि माइंड को प्रोग्राम किया जाए, इस बॉडी को डिजाइन किया जाए, और इसके आसपास में जो रिलेशनशिप्स हैं, जो बिजनेस है, जो काम है, जो भी कुछ मैं कर रहा हूं इस सोसाइटी के लिए या अपने लिए या ये वो, सबको कैसे परफेक्टली किया जाए। जो परफेक्ट कभी हो नहीं सकता, लेकिन नहीं भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये खेल है, समझ पा रहे हो। तो धीरे धीरे, अगर और कुछ नहीं तो यार मेरी इतनी सी बात को समझो, ज्यादा डीप में मत जाओ, इतनी सी बात को समझो कि जिंदगी एक खेल है। अगर ऐसा आप मान लेते हो तो आपका गया क्या, ये बताओ मुझे, आपको सब कुछ मिल गया लेकिन आपका गया कुछ भी नहीं, क्योंकि अब इस खेल को आप अच्छे से खेल सकते हो, फिर 24 घंटे आप यही दिमाग लगाओगे कि अब कहां पर इस खेल में ना क्या कमी रह गई है। जैसे वीडियो गेम खेलते हैं, हम सब खेलते हैं, उसमें क्या पहले दिन में जब आप खेल रहे होते हो आप एक्सपर्ट हो जाते हो, पहले दिन में क्या 10वें लेवल पे पहुंच जाते हो, ऐसा नो नहीं पहुंचते हो, टाइम लगता है ना। लेकिन क्या आप पहले दिन में 10वें लेवल पे नहीं पहुंचे तो क्या खेल खेलना बंद कर देते हो, आप उसको परफेक्ट करते रहते हो, बार बार गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर उसको बेटर करते हो, बेटर करते हो, बेटर करते हो, धीरे धीरे आप क्या होता है, आपका लेवल बेटर होने लग जाता है, आप 5वें पे जाते हो, 10वें पे जाते हो, 20वें पे। अब जिंदगी के खेल पे वीडियो गेम में क्या फर्क है, वीडियो गेम में एक एंड आ जाता है, एक एंड आ जाता है कि ये 50वां लेवल है, इसके आगे और कुछ

0: मतलब अब आप अवेयर हो गए उस खेल में,
1: अभी आप अवेयर नहीं हो, अभी आप बस अपने बारे में सोच रहे हो, आप सामने वाले के बारे में नहीं सोच रहे हो। आपको यह तक पता होगा कि इस खेल में अगर मैंने ये उल्टा बोला अपनी वाइफ को तो वहां से एक रिएक्शन आएगा जिसकी वजह से हमारी 4 दिन तक लड़ाई चलेगी। क्यों बोलना है मत बोलो, क्यों ऐसी बातें बोलनी है जिसकी वजह से कलेश होने वाला है, या उन्होंने कुछ बोल दिया तो चुपचाप मुंह नीचे करके वहां से निकल जाओ, कितना मजा आएगा खेलने में। मतलब जब तक आपकी सांसें चल रही होंगी बीमार हो गए, अभी क्या होगा बीमार हो गए तो रोने लग जाओगे, या थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई, थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया तो क्या होगा, दुखी हो जाओगे। दुखी क्या होना है, खेल है, खेल का पार्ट है। बीमार होगा उस बीमारी को देखो, समझ पा रहे हो क्या मुश्किल है करना, बहुत आसान है अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तो। अपनी उस बीमारी को डिटैच होकर के देखो कि मेरे हाथ में एक रिमोट है यानी कि माइंड, और ये बॉडी है जो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, और ये बॉडी बीमार हो गई, अब मैं क्या करूं। अब उस रिमोट में क्या ऐसा कोई बटन है जिससे या तो बीमारी ठीक हो, या वो बीमारी दोबारा ना हो, या अगर बीमारी पता है कि हो गई है और इतने दिन लेगी ये ठीक होने में और उसका उसकी कोई दवाई अभी बनी नहीं है इस पर्टिकुलर गेम के अंदर जिसको वर्ल्ड बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, तो मैं क्या करूं। चलो एक्सेप्ट कर लेता हूं, खेल है, लेट इट बी, हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है, 10 दिन में गायब, समझ गए। देन यू विल हैव पेशेंस आल्सो, ठीक है, खेल चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है। खेल में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, क्या फर्क पड़ता है। रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो गई, क्या फर्क पड़ता है। जो अच्छी है आज कल बुरी भी हो सकती है, जो आज बुरी है कल अच्छी हो सकती है। खेल की तरह देखो, बिजनेस को खेल की तरह देखो, लाइफ को खेल की तरह देखो, अपने आप को बेटर बनाने के बारे में सोचो। ये हम नहीं सोचते हैं, बस हम ये सोचते हैं कि जो हमको चाहिए ना वो फटाफट से हमको मिल जाए, तो उस चक्कर में आप चिंदी बन जाते हो। बुरा लगेगा सुनने में, बट चिंदी बन जाते हो, समझ ही 5-10 हज़ार रुपए वाली बन जाती है। उस वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते हैं, उस वजह से हम लाइफ में दुखी रहते हैं, हम नीचे धंसते चले जाते हैं, क्योंकि फिर हमारी सारा जो सुख दुख है वो चीजों से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड है, बाहर जो चीजें उससे रिलेटेड है। सारा कंट्रोल दुनिया के हाथ में है, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं। आ रहा है ना पकड़ में, चीजें आ गई चली गई, क्या फर्क पड़ता है, खेल है। समझे, आज ये बॉडी है, इस बॉडी के आसपास में और बॉडीज है, कल एक बॉडी उसमें से कम हो गई, क्या फर्क पड़ता है, खेल है। ये धीरे धीरे समझना है आपको इसको, ये बॉडी कम हो गई चाहे दूसरी बॉडी है, क्या फर्क पड़ता है, खेल है। बीमार हो गई फिर ठीक हो गई, समझ रहे कितना मतलब मजेदार है, इट्स फनी एक्चुअली, अगर आप इसको लाइट हार्टेड होकर के देख पाओ तो। आपके लिए एक्चुअल में दूसरों की लाइफ तो फनी ही है, बस अपनी लाइफ ही सीरियस है। अरे पड़ोसी के साथ कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब आपके लिए फन है। अपनी लाइफ में जरा से भी कुछ हो जाए तो ये क्या हो गया मेरे साथ में, क्या मूर्ख वाली हरकत कर। Be mature, be wise. समझो कि किसमें आपकी पावर्स बढ़ेंगी और किसमें घटेंगी। बिजनेस में लॉस लग गया, मान लो बहुत बड़ा लॉस लग गया, अब लग रहा है कि बेटा कल सड़क पे आने वाले, क्या हो गया, खेल है। अब देखते हैं अगली चाल क्या होगी, मुझे खुद भी नहीं पता कि अगली चाल क्या होने वाली, अरे मजा आ गया, खेल है। समझ रहे हो, यही तो खेल का मजा है, मुझे नहीं पता अगले कदम पे क्या होने वाला, यही तो एडवेंचर है। देखो एक वीडियो गेम है जिसमें जो लेवल्स आप क्रॉस कर चुके हो उसी को बार बार क्रॉस करने में मजा आता है, या अगले लेवल पे जाने में मजा आता है। ये बात लोगों को समझ नहीं आती है रियल लाइफ में। जैसे जिंदगी जी रहे थे आज से 10 साल पहले, आज भी वैसे ही जी रहे हैं, रिपीट मोड, ईट स्लीप रिपीट, ईट स्लीप रिपीट, रिपीट कर रहे हैं, क्या मजा है, सेम लेवल पे। इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है सारे के सारे, उनके पास जाकर के बैठोगे खुद थके हुए हैं, आपको भी थका देंगे। लाइफ नहीं नजर आएगी, बॉटल जैसे है, समझ गए ना, बॉटल मुर्दा है ना, मुर्दा है ना, इसके अंदर जान नहीं है ना, लोगों के अंदर जान है क्या, अरे नहीं, बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके अंदर जान होगी, मतलब वो जिंदगी के हर पल में आपको एक्टिव मिलेंगे। बच्चों के साथ खेलेंगे तो खुल के खेलेंगे, काम करेंगे तो खुल के करेंगे, जो कर रहे हो खुल के करेंगे, इश्क करेंगे तो खुल के करेंगे, कमाल के आशिक होंगे वो, समझ गए, इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं।

ऐसी चीजें जो आदमी सोच भी नहीं सकता वो सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये खेल है। लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या एक हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप परफेक्ट हो सकती है। सोच सकते हैं? सोचते ही नहीं। लोगों को सोचने में डर लगता है। हो सकता है, बहुत आसान है। देख सकते हैं मेरी आंखों में, झूठ नहीं बोल। बहुत आसान है। अगर खेल समझ जाओ तो, खेल समझ आए तो, समझ गए ना, मेरा पति है, उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में, अब मुझे सारा कुछ याद आ रहा है, उसने पहले भी वो किया था, अब जिस बात पे हमारी लड़ाई हो रही है वो तो हम भूल ही गए हैं, हमारी बहस किसी और बात पे हो रही है, अब वो सारा कुछ आ गया, मैं क्या करूं, अब वो भी चीख रहा है मैं भी चीख रही हूं, समझ रहे हो ये क्या गेम चल रहा है यार। इसको आराम से समझो, इसको खेल की तरह देखो। लग गई तो क्या हो गया, लगी हुई है लाइफ में, सबकी लगी हुई है, क्या हो गया, खेल है, खेल है जी, अभी लगी हुई है, कल बेटर हो जाएगी लाइफ, जरा सा कुछ अच्छा हो जाएगा, आज जो जॉब है वो अच्छी नहीं है तो आज बुरी हालत है, ठीक है, पार्ट ऑफ गेम है जी, पार्ट ऑफ लाइफ है, कल एक अच्छी जॉब लग जाएगी, हम एकदम से खुश होने लग जाएंगे, फिर वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ये गेम है, बी एडवेंचरस, बी रेडी टू प्ले दिस गेम ऑफ लाइफ। अगर ऐसे आप बन सको, जो बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो कहां है फियर ऑफ डेथ बताओ? इफ यू नो दैट कि ये बॉडी जिसको हम डेथ बोलते हैं, इस बॉडी को बचाने का कोई तरीका नहीं है, मरनी ही मरनी है, जानी जानी चाहिए, ये बॉडी हो चाहे कोई भी बॉडी हो, जो अंदर का सॉफ्टवेयर है जो इससे कनेक्टेड है, वो जब ये बॉडी नहीं तो वो सॉफ्टवेयर कहां है, समझ गए? तो सॉफ्टवेयर भी गया, हार्डवेयर भी गया, बचा क्या? मैं बचा, यह मैं नहीं पता कि क्या बचता है क्या नहीं बचता है, और मैं हूं कौन ये नहीं पता है, तो फियर ऑफ डेथ निकल जाता है। कोई और भी अगर गया तो क्या गया, बॉडी गई ना, कुछ है जो नहीं मरता है, और वो हमको समझ आ जाए कि वो जो कुछ है इस पूरी दुनिया में एक ही चीज है और कुछ नहीं है, बाकी सब मरता है, सब मरता है जी, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मरता, कुछ ऐसा है जो पिछले हजारों सालों में, लाखों सालों में, करोड़ों सालों में, जब से दुनिया थी है और जब तक रहेगी, वो नहीं मरा। अगर हमको समझ आ जाए कि मैं वो ही हूं तो तब ये खेल कैसा होगा, समझ पा रहे हो? मतलब इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कैन नॉट डाई, एंड इवन इफ आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दिस बॉडी, दिस कैन नॉट सर्वाइव, दिस हैज टू डाई, इज द पार्ट ऑफ द गेम।

0: आज मैं आपको बताता हूँ हेलमेट ना पहनने के दो फायदे।
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
0: पहला फायदा, आपके ऊपर मूवी बनाई जाएगी, क्योंकि सार फूटने से आप गाज नहीं बांध सकते हैं।
2: बहुत तेज हो रहा है।
0: दूसरा फायदा, आपकी पुलिस वालों से अच्छी जान पहचान हो जाएगी, क्योंकि हाई सिग्नल पर वो आपको रोक ही लेंगे।
3: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वार्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वार्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वार्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
1: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
2: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: जब का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय बाय।

लगता है ये जो दिल्ली एनसीआर के और नॉर्थ इंडिया के लोग है ना, सिर्फ इन्हीं को गर्मी लगती है। यही रीजन है कि इनकी गर्मी को दूर भगाने के लिए ना इन सबका जीपीएस सिर्फ एक ही डायरेक्शन दिखा रहा है, वो है पहाड़। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जेंटली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। सो भाई गर्मियों से परेशान होकर ना लोग पहाड़ों की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इनसे अब पहाड़ भी परेशान हो गए हैं। बिकॉज अगर बात करें ना पहाड़ों की, तो मैदानी इलाकों में इस टाइम पर टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री तक पहुंच रहा है, और इस वजह से हजारों लोग वीकेंड और समर वेकेशन के लिए पहाड़ों की तरफ निकल पड़े हैं। लेकिन इसका रिजल्ट ये है कि मनाली, रोहतांग, नैनीताल, औली और बद्रीनाथ, इन सभी डेस्टिनेशंस पर गाड़ियां चल कम और रिंग ज्यादा रही है। अब आप इस बात से तो समझ ही गए होंगे कि इतना ज्यादा ट्रैफिक लग गया है पहाड़ों पर कि पहाड़ों को भी सांस नहीं आ रही है, और यहाँ से हम जा रहे हैं पहाड़ों पर खुली सांसें लेने के लिए। फिर ये सब पता होने के बावजूद भी ना हम रुक नहीं रहे, हम जोरों शोरों से पहाड़ों की तरफ निकल रहे हैं। तो भाई पहले तो ये जानिए कि हम पहाड़ों की तरफ जा क्यों रहे हैं। ठंडी हवाएं लेने, बर्फ के नजारे देखने, रेनी वेदर एंजॉय करने और सिटी की हीट से थोड़ी दूर। लेकिन आपको पता है इस वक्त ना पहाड़ों पर ही कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा बहुत लंबा किलोमीटर का जाम। सो माय डियर लिसनर्स, बस एक रिमाइंडर लेकर आई हूँ कि ट्रिप ना फिर कभी प्लान कर लीजिएगा, ये गर्मी एसी में बैठकर कम कर लीजिए, पहाड़ों का थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए, क्योंकि एनवायरनमेंट हेल्दी रहेगा तो शायद हम हेल्दी रह पाएंगे। अगर गर्मी की बात करूँ ना तो गर्मी का लेवल ऐसा है कि लोग सोच रहे हैं ट्रैफिक में फंस जाएंगे तो भी चलेगा, बस एसी वाली हवा नहीं चाहिए। सो इसीलिए आज मैंने सोचा क्यों ना एक ट्रैवल टिप लेकर आई हूँ। सो आज की ट्रैवल टिप ये है,

0: अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: अहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: जब का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

जब प्यार सच्चा हो ना तो आप अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर क्या चंदा तारे, फिर क्या ताजमहल, आप गिफ्ट में ना कुछ भी दे सकते हैं। और ऐसा ही कुछ दिल्ली के दीवाने ने कर दिखाया। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। इन दिनों गर्मी इतनी ज्यादा है कि सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, और अगर सनस्क्रीन की तरफ देखा जाए ना तो बहुत ही मोटा खर्चा नजर आता है। लेकिन जब आपको अगर ऐसा पार्टनर मिल जाए ना जहाँ आपके लिए सनस्क्रीन भर भर कर आए, तो फिर और क्या ही चाहिए। कहते हैं ना, जब प्यार सच्चा हो तो गिफ्ट्स में फ्लावर्स नहीं, सनस्क्रीन के कार्टन्स भी हो सकते हैं। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर एक फनी सटायर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक दिल्ली बॉय ने अपनी गर्लफ्रेंड को पीक समर में बाहर मिलने के लिए बुलाया और मोहतरमा ने कर दिया मना। उसका रीजन ये था 45 डिग्री की गर्मी और धूप का अटैक। तो मैडम ने अपने पार्टनर को बोला, देखिए ऐसा है, इस गर्मी में हम तो बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि टैन बहुत हो जाएगा। तो फिर क्या था, पार्टनर ने भी सोच लिया और गर्लफ्रेंड को कर दिए 67 पैकेट सनस्क्रीन गिफ्ट्स। सो इस गिफ्ट के बाद ना मोहतरमा मान गई और दोनों की मुलाकात भी हो गई। देखिए वैसे फनी बहुत है, लेकिन गिफ्ट बहुत कमाल का था। और जब भी अगर किसी को आप गिफ्ट देने का सोचो ना, तो ये जरूर सोचेगा कि वो गिफ्ट उनके कितने काम आ सकता है। सो अगर इस स्टोरी की बात करूँ ना, तो स्टोरी के पीछे का मोटिव बहुत ही बढ़िया था। गिफ्ट ऐसा दो कि काम आए। और इस दिल्ली की गर्मी में इन दिनों प्यार का असली टेस्ट भी हो गया। सो भाई, जो इतनी भरी गर्मी में मिलने आ जाए, शायद वही सच्चा प्यार है। और देखिए, मजाक अपनी जगह, लेकिन इस वेदर में खुद का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है। हाइड्रेटेड रखिए खुद को, सनस्क्रीन लगाइए और आफ्टरनून सन से बचकर रहिए, सो दैट कि आप इस गर्मी से बच सके। सो दिल्ली की गर्मी में रोमांस से पहले सर्वाइवल जरूरी है, इस चीज का ख्याल जरूर रखिएगा। क्योंकि उन मोहतरमा को तो सनस्क्रीन मिल गए, लेकिन आपको कोई सनस्क्रीन देने वाला नहीं है। तो खुद ही अपनी सनस्क्रीन खरीदिए, खुद ही अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसे लायक?
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मिनी बस आ गई।
1: सुनो सुनो।

जब बात आती है ना साइबर फ्रॉड की, तो इतने इंटरेस्टिंग केसेस सामने आते हैं कि भाई ऐसे लगता है कि आप किसी वेब सीरीज की कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जुन श्री आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो फाइनली एक और स्कैम मार्केट में आ गया, और स्कैम ये है, शादी के इनवाइट समझकर अगर आपने कभी फाइल ओपन की ना, सो हो सकता है स्कैमर्स आपका बैंक अकाउंट खाली कर दे। एक्चुअल में एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया बैंगलोर से। बैंगलोर के एक बिजनेसमैन के साथ साइबर फ्रॉड का एक शॉकिंग केस फिर से हो गया, जहां उनको एक व्हाट्सएप पर आई थी एक वेडिंग इनविटेशन की फाइल। उन्होंने उस इनविटेशन को क्लिक किया और क्लिक करते ही ना लाखों का नुकसान करा लिया अपना। बात अगर स्कैम की करें तो पहले ये जानते हैं कि आखिर ये स्कैम हुआ कैसे। सबसे पहले व्हाट्सएप पर वेडिंग इनवाइट उन्हें रिसीव हुआ, एपी के फाइल जब उन्होंने ओपन की तो मालवेयर इंस्टॉल हो गया अपने आप ही, एंड स्कैमर को मिल गया उनके फोन और बैंकिंग डिटेल्स का पूरा एक्सेस। और देखते ही देखते कुछ ही देर में अकाउंट से मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो गए और लाखों का नुकसान हो गया। अब स्कैम के अंदर ना एक चीज थी, वो थी एपी के फाइल। तो आखिर ये एपी के फाइल है क्या? सबसे पहले तो एपी के फाइल एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉलेशन फाइल होती है। अगर इस फाइल की बात करें ना, तो ये अननोन फाइल बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर होता है हिडन सॉफ्टवेयर। अब बात तो कर ली स्कैम की कि आखिर स्कैम हुआ कैसे, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर स्कैम से बचा कैसे जाए। सबसे पहले तो आपको जो भी अननोन फाइल रिसीव होती है, कभी भी उसे ओपन ना करें। साथ ही अगर बात की जाए ऐप्स की, तो ऐप स्टोर या फिर एक ट्रस्टेड ऐप साइट से ही किसी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इसके साथ ही अगर व्हाट्सएप पर आपको कोई भी सस्पिशियस फाइल मिलती है, उसे जरूर वेरीफाई कीजिए। बैंकिंग अलर्ट्स और परमिशन रेगुलरली चेक करते रहिए, सो दैट कि आपको पता रहे कि आपके फोन के साथ क्या एक्टिविटी हो रही है। और बस यही कहना चाहती हूँ, डिजिटल दुनिया में क्यूरियोसिटी से पहले ना थोड़ी सी सावधानी जरूरी है। एक रॉन्ग क्लिक आपकी पूरी मेहनत की कमाई रिस्क में डाल सकता है। स्टे अलर्ट, स्टे साइबर सेफ और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

उफ, ये गर्मी गर्मी इतनी ज्यादा है और इस गर्मियों में ना खुद का ख्याल कैसे रखना है ये मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन फिर भी अपना ख्याल जरूर रखिएगा। फिलहाल मेरा वक्त हो गया है यहाँ से जाने का, सुबह 7 बजे आई थी और अब 10 बजने वाले हैं। बहुत सारी बातें आपके साथ की है, और फिर से आऊंगी एंटरटेनमेंट की डबल डोज के साथ आपके शहर में। वेदर से लेकर ट्रैफिक की क्या अपडेट है ये भी आपको सुनाऊंगी, साथ ही सोशल से अब क्या रहने वाला है ये भी आपको बताऊंगी। तो फिलहाल मेरा वक्त हो गया है यहाँ से जाने का, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आज जाऊंगी तभी तो कल आऊंगी, लेकिन मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। अब फिर मिलेंगे कल सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM पर। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। दिस इज आरजी अंजलि।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे ग्लास तो पीती रहा सुन।
2: लाइफ ऑन व्हील्स।

0: जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
7: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
8: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले मौसम के बारे में, जहाँ 10:07 इस वक्त हो रहे हैं, और बात की जाए 31 डिग्री सेल्सियस तापमान शहर का बना हुआ है। जहाँ 10 अगर बात करें हफ्ते भर पहले की, तो 37-38 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बना हुआ था। अब थोड़ा सा तापमान गिरता जरूर नजर आया है, पीछे ठंडी हवाएं, बादल छाने से और कुछ बारिश आने से। यही तापमान आने वाले कुछ दिन तक रहने वाले हैं, और आज भी दोपहर के बाद बारिश के आसार हैं, कल का दिन भी बारिश के आसार रहने वाले हैं। भाई बारिश आए या ना आए, मतलब कि मेघा बरसे या ना बरसे, मौसम ठंडा जरूर हो गया है। तो वीकेंड जैसे ये भी अच्छा था, कहा जा रहे आने वाले वीकेंड भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है, कुछ खुशनुमा। बाकी ऐसी अभी चर्चाएं होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों में। यहाँ दोस्तों बात करते हैं अब साइबर फ्रॉड्स के बारे में, जहाँ हम सब जानते हैं कि आए दिन साइबर फ्रॉड्स होते नजर आते हैं, कभी मोबाइल पर अननोन नंबर से एपीके फाइल्स आने से, और कभी बात की जाए ऑनलाइन लिंक्स के आने से, ऑनलाइन लिंक्स पर क्लिक करने से, कभी समर वैकेशन कैंप्स के नाम पे, तो अलग अलग चीज़ों के नाम पे, कभी डिस्काउंट के नाम, ये कहना चाहूँ कभी डिस्काउंट आइटम्स आपको अगर ऑनलाइन पोर्टल्स पर दिख रहे हैं तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा सोचें उसके बाद ही वहाँ पे कंफर्म करें, बिकॉज अननोन और नए नए वेब पोर्टल जैसे आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, आपके अकाउंट से पैसा खाली हो सकता है। अननोन लिंक्स पर क्लिक ना करें, आपको मोबाइल हैक करके आपके OTPs वगैरह सब उनके पास जा सकते हैं, जिससे कि साइबर फ्रॉडर्स आपके अकाउंट को खाली कर सकते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों से सावधान रहें, कुछ भी ऐसा होता है अगर

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, ये आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी. यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वॉर्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वॉर्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वॉर्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद.
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर.
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा. और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट. सो कम एंड ज्वाइन कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फॉरएवर। यहाँ दोस्तों सिनेमा की गलियारे से बहुत चर्चाएं करने वाला हूँ कि कौन कौन सी नई कहानियां सिनेमा घरों में रिलीज होने को है तैयार, थे कौन से नए गाने धमाल मचाते नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, कहीं हो रही है सिल्वर स्क्रीन की अनाउंसमेंट तो कहीं है ओजीडी का धमाल। हॉरर कॉमेडी साथ ही साथ रोमांचिक कहानियों का है धमाल, तो कहीं हॉलीवुड में थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर आ रही हैं कहानियां। इन सभी चर्चाएं करने वाला हूं लेकिन उस पहले सुनाऊंगा कुछ धमाकेदार से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: आगे गराज, गराज की ये मैकेनिक।
1: देखो मुझे पापा ने तेरे कहा उसने रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करनी है ये ठानी।
0: इसके आगे मैं नहीं बता सकती।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।
7: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: डांस बसंती।
1: इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यह हम बात करते हैं सामंथा रूथ प्रभु की एक नई कहानी जहाँ प्रोड्यूस करती भी नजर आ रही हैं और साथ ही कास्ट में भी मेन लीड किरदार में सामंथा का ही किरदार है। जहाँ इस कहानी को हम सब जानते हैं कि 15 मई को रिलीज किया जाने वाला था लेकिन आईपीएल सीजन के चलते इस क्लैश को अवॉइड किया गया। यार हर कोई तो आईपीएल देखने चल जाएगा तो कहानी को थिएटर्स में देखने कौन आएगा। तो इस कहानी को फाइनली 19 जून को थिएटर्स में रिलीज किया जाने वाला है जहां सामंथा के फैंस काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे माँ कहानी की रिलीजिंग का। तेलुगु एक्शन कॉमेडी फिल्म है जहां थ्रिल का भी डोज आपको दिखाई देगा और कहीं ना कहीं फन का डबल डोज इस कहानी में होने वाला है। सामंथा के कैरेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे उनके कैरेक्टर में कहीं ना कहीं कॉमेडी भी दिखाई देगी तो एक्शन भी भरपूर होने वाला है। अब देखते हैं इस कहानी को कितना ज़्यादा पसंद किया जाएगा। ट्रेलर टीज़र को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और अब इंतज़ार है तो कहानी के रिलीजिंग को लेकर अगर बात की जाए तो अभी 18 दिन बाकी है। 18 दिन का इंतज़ार फिर ये कहानी क्या धमाल मचाएगी उसका रहेगा इंतज़ार। बाकी ऐसी अभी चर्चाएं करता रहूँगा उससे पहले एक और ट्रैक।

जी गनी के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ फिल्मी टॉनिक आरजे मॉनिक लेकर के सिनेमा के गलियारों की चर्चाएं। यहाँ हम बात करते हैं जहाँ किंग के सेट से अभिषेक बच्चन की अगर बात की जाए, इनका लुक की जब से सोशल मीडिया पर चंड करता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे इस बार फिल्म में वुलन के किरदार में नजर आ रहे वाले हैं अभिषेक बच्चन। जहाँ अगर बात की जाए, एक रग्ड और डार्क ओवरकोट लुक में नजर आए हैं अभिषेक बच्चन, और कहा जा रहा है कि इस किरदार को लेकर के अभिषेक ने काफी अच्छा खासा अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी करी है। इस कहानी की बात की जाए तो यहाँ पे एस आर के मेन लीड किरदार में होने वाले हैं, जहाँ पे सिद्धार्थ आनंद का हाई स्केल एक्शन प्रोजेक्ट बताया जा रहा है ये कहानी। कहानी में दीपिका और सुहाना भी नजर आएंगे। इस कहानी की बात की जाए जहाँ कहा जा रहा है कि 2026 एंड में इसको रिलीज किया जा सकता है, अभी लेकिन अभी ऑफिशियली डेट अनाउंस नहीं की गई। इनके अलावा जैकी श्रॉफ, जयदीप अहलावत, करणवीर मल्होत्रा और अनिल कपूर, रानी मुखर्जी, अक्षय ओबेरॉय, सौरभ शुक्ला, अभय वर्मा, अर्शद वारसी जैसे स्टार्स नजर आने वाले हैं। एक्शन और थ्रिल से भरपूर ये कहानी, जहाँ पे स्टार कास्ट की भी काफी अच्छी खासी लंबी लाइन नजर आ रही। इंतजार रहेगा इसकी रिलीजिंग का, बाकी ऐसी भी चर्चाएं होती रहेंगी। उससे पहले एक और ट्राई

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

प्यार है इस खातर तेरा तक करया प्यार कोन्या, और सारी दुनिया में जागी टोली है तने जाट वर्गा मिलेगा यार कोन्या। और मैडम है दिन में सिपटा रात ने स्टूडियो में गावे, मने तेरा जैसा देखा स्टार कोन्या, तेरा जैसा देखा स्टार कोन्या।

0: शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
3: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद,
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से वेलकम बैक है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लिप। यहाँ बात करते हैं, जहाँ वेलकम बैक किया है तो वेलकम को फिर से बैक करने जा रहे हैं। वेलकम आ रही है फिर से, लेकिन इस बार नाम होगा वेलकम टू द जंगल। जहाँ हम सब जानते हैं कि 26 जून को ये कहानी रिलीज की जाने वाली है और कास्ट इतनी बड़ी है कि नाम गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन किरदार और स्टार की लाइन खत्म नहीं होगी। जहाँ अगर कुछ किरदारों के नाम मैं नाम लेना चाहूँ, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा, जैकलिन फर्नांडिस, अर्शद वारसी, जैकी श्रॉफ, परीश रावल, लारा दत्ता, रवीना टंडन, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, पाल यादव, कृष्णा अभिषेक और ना जाने कितने सारे नाम। नाम ही लेता जाऊंगा तो चर्चा कब करूंगा। जहां टीजर की बात की जाए तो इसे हाल फिलहाल टीजर भी रिलीज किया गया, इसको अच्छा खासा प्यार भी मिलता नजर आया। बहुत लंबे अरसे बाद उम्मीदें लगाई जा रही है अक्षय कुमार की कोई कहानी अच्छा खासा धमाल और प्यार कमाते नजर आने वाली है। जहाँ अक्षय कुमार की पिछली कहानी रिलीज हुई उतना ना ही धमाल मचा पाई, ना ही इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग बटोर पाई। वेलकम टू द जंगल से अच्छी खासी उम्मीदें हैं, अब देखते हैं क्या होता है और क्या क्या नहीं। इसी मंथ के एंड में पता लग जाने वाला है कि कहानी को कितना प्यार मिटेगा और कितने स्टार रेटिंग मिलने वाली है। वेलकम टू द जंगल के गाना हो चाहे टीजर, दोनों को तो इस वक्त अच्छा प्यार मिल रहा है। अब कहानी की क्या इम्पैक्ट होने वाला है सभी के ऊपर, ये देखने वाली बात होगी। रहेगा इंतजार, बाकी ऐसी और भी चर्चाएं होती रहेंगी। उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस. कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था.
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश.
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया.
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है.
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया.
6: आवारा हूँ आवारा.
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है. तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग सुनना न भूले. सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM. कुछ हटके.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी के फिल्मी फ्लेवर। यहाँ अब हम बात करते हैं एक और बढ़िया कहानी के बारे में। बात की जाए यहाँ पे वामिका गब्बी के बारे में। वामिका गब्बी की अगर बात करूँ तो इंडस्ट्री की बहुत ही अच्छी स्टार है, जहाँ पंजाबी इंडस्ट्री से अच्छी खासी पकड़ बनाती नजर आई। पंजाबी इंडस्ट्री में दमदार कैरेक्टर्स प्ले करके जहाँ फिर मौका मिला बॉलीवुड की और वेब सीरीज से आगे बढ़ते बढ़ते एक और नई कहानी के साथ कदम जमाते नजर आ रही हैं। लोकेश कनकराज एक्टिंग डेब्यू कर रही है कहानी, जहां वामिका और संजना इम्पोर्टेंट किरदारों में नजर आएंगे। बात करें यहां पे वामिका गब्बी की कहानी को, हाल फिलहाल कांसविल फेस्टिवल में भी प्रीमियर किया गया, जहां पे इस कहानी को अच्छा खासा प्यार मिला। कहानी की कास्ट हो चाहे स्टोरी लाइन, और बात की जाए इस कहानी की रिलीजिंग को लेकर के, तो वामिका गब्बी के फैंस इंतजार कर रहे हैं कि इस कहानी को कब रिलीज किया जाने वाले। मेकर्स की ओर से अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई कि इसे मिड ऑफ द 26 को रिलीज किया जाएगा या फिर एंड ऑफ द 26 को। लेकिन अकांत फिल्म फेस्टिवल में इस कहानी को अच्छा खासा प्यार मिलता नजर आएगा, और वामिका का किरदार इस बार बिल्कुल ही डिफरेंट, कुछ हटके होने वाला, जैसे कि रेडियो महारानी है कुछ हटके। वामिका कहना है कि मुझे अपने किरदार में ढलने के लिए कम से कम भी ना हो तो 7 से 8 मंथ्स लगे कि किरदार में ढल जाऊं। उसके बाद हमने शूटिंग स्टार्ट करी और इसी वजह से शूटिंग को भी 4 महीने के लिए डिले करना पड़ा। देखते हैं अब इस किरदार में जहाँ इतनी मेहनत करी तो किरदार क्या रंग लाता है, कितना धमाल मचाता है, रहेगा इंतजार। बाकी ऐसी भी चर्चाएं होती रहेंगी, उससे पहले एक ऑर्डर।

0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: मोना,
0: सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। अब बात करते हैं यहाँ पे तुम्भाड़ के बारे में, जहां देखिए अगर बात की जाए तो क्यों का भी अभी कुछ नहीं पता बॉस कब इसको स्ट्रीम किया जाने वाला। वहीं अगर बात की जाए तुम्बाड़ में, जहाँ आलिया भट्ट का एक कैमियो कैरेक्टर भी है और इस कैमियो कैरेक्टर को बहुत बढ़िया तरीके से पेश किया जाने वाला। लेकिन साथ ही कहा जाए तुम्बाड़ 3 की चर्चाएं भी उसी वक्त से शुरू हो गई जब यहाँ कैमियो किरदार आलिया भट्ट का आया, तो वहां बात आई कि ये कैमियो जो है आगे बढ़ते नजर आएगा और ये आगे ऐसा किरदार होगा कि 3 में आलिया भट्ट का फुल फ्लेज मेन लीडिंग किरदार सबके सामने लाया जाने वाला। और तुम्बाड़ की अगर बात की जाए यहाँ पे कास्ट में काफी अच्छे अच्छे नाम नजर आ रहे हैं, जहां पे सोहम शाह की फ्रेंचाइज का सेंट्रल फेस आलिया भट्ट इस बार मेन फोकस में किया जा रहा है। और देखें आलिया का कहना है कि इस किरदार के लिए कैमियो ऑफर था जहां एक्सेप्ट हुआ, लेकिन ये पता नहीं था कि इसको इतना एक्सटेंड किया जाएगा कि लीडिंग किरदार में अगली कहानी में नजर आने वाली है आलिया। और तुम्बाड़ 2 की बात की जाए तो 2027 में रिलीज होगी और तुम्बाड़ 3 को कब लाया जाने वाला है इसका तो अभी कुछ पता ही नहीं। देखते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं, क्या ये आलिया भट्ट का कैमियो किरदार इतना पसंद किया जाने वाला है या इतना बढ़िया तरीके से इसको बनाया जा रहा है कि 3 में मेन लीडिंग किरदार यानी कि फोकस्ड कैरेक्टर जो है आलिया का ही रहने वाला है। इंतजार रहेगा आलिया के साथ उनके अपोजिट और कौन होने वाला है इसकी अनाउंसमेंट का भी, बाकी ऐसी अभी चर्चाएं होती रहेंगी। उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

लीजिए मैं भी आ गया लेकर के शो फिल्मी फ्लेवर। बात करते हैं हम यहाँ पे धमाल की अगली किस्त यानी कि धमाल 4 के बारे में। बात करें यहाँ पे अजय देवगन की इस कहानी को, जहाँ पहले सेम डे रिलीज किया जाने वाला था कि इसको वेलकम टू द जंगल के साथ ही रिलीज किया जाएगा, लेकिन देखा गया यार दोनों ही बड़े स्टार्स हैं, अगर ये कहानी क्लैश होती है तो किसी ना किसी एक कहानी को तो नुकसान हो गई और शायद दोनों को, ऑडियंस 50-50 में बट जाएगी, कोई भी कहानी अपना अच्छा खासा धमाल नहीं दिखा पाएगी। जहाँ फिर धमाल 4 की प्लानिंग की अगर बात की जाए तो 13 जुलाई को फिक्स की गई और उससे पहले 14 जून, लेकिन करते करते इसको सिर्फ एक ही दिन टाला गया है। अब देखते हैं क्या ये कहानी अगले दिन यानी कि 17 जुलाई को रिलीज होने के बाद इस टक्कर से बच पाएगी या फिर अपनी ऑडियंस अलग से क्रिएट नहीं कर पाएगी। ये तो बॉस रिलीजिंग के दौरान ही पचेगा। दो बड़े स्टार्स की कहानी चाहे एक हफ्ते बाद भी रिलीज हो, एक कहानी दूसरी कहानी को आसानी से टक्कर देना पॉसिबल तो नहीं है बॉस। एक एक्शन खिलाड़ी है तो दूसरे कॉमेडी के फनकार। देखते हैं अब दोनों कहानियां रिलीज होने वाली हैं तो क्या होगा और क्या नहीं, ऑडियंस बढ़ती है या फिर अपने फेवरेट स्टार के चक्कर में एक ही कहानी को रिस्पॉन्स देते नजर आती है, इंतजार रहेगा। बाकी ऐसी और भी चर्चाएं होती रहेंगी सिनेमा के गलियारे से, लेकिन आज नहीं, अब आपसे मुलाकात होगी कल के दिन सेम टाइम सेम जगह करूंगा ढेरों बातें। तब तक सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाए कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

है, प्यार भी है, गन भी है, लड़ना पैमान भी है, मिले जे कोई चाहता है।

बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स एंट्री मारते ही सुपरस्टार बन जाते हैं और कुछ सालों तक ऑडियंस के दिल में क्वाइटली जगह बनाते रहते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं जिमी शेरगिल की, जो दूसरे वाले एक्टर हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं नन अदर देन जिमी शेरगिल की। पंजाब का एक सिंपल लड़का जिसका असली नाम था जसजीत सिंह गिल, ना फिल्मी बैकग्राउंड ना इंडस्ट्री कनेक्शन, बस एक काम फेस और आंखों में मोस्टली ऑनेस्टी। 1996 फिल्म माचिस, गुलजार की फिल्म, सीरियस सिनेमा, और उस फिल्म में एक यंग जिमी शेरगिल। रोल छोटा था लेकिन इम्पैक्ट रियल। फिर आई एक फिल्म जिसने उनकी इमेज हमेशा के लिए चेंज कर दी, मोहब्बतें, राज आर्यन का वायलिन और उसके सामने एक इनोसेंट लवर करण। जिमी शेरगिल स्क्रीन पर एक्टिंग नहीं करते थे, वो बस नेचुरली फील होते थे। और कैसे बने वो सबके फेवरेट, करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए गाना, आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात करते हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा, सुन।

0: ये बॉलीवुड का सबसे अजीब रूल है। ऑडियंस आपको प्यार कर सकती है, फिर भी इंडस्ट्री आपको सुपरस्टार नहीं बनाती। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं नन अदर देन चॉकलेट बॉय जिमी शेरगिल की। मोहब्बतें के बाद सबको लगा ये नेक्स्ट बिग रोमांटिक हीरो है। लुक्स थे, चार्म था, एक्टिंग भी थी, लेकिन 2000s का बॉलीवुड अलग था। वहां लाउड हीरोज चल रहे थे, जिमी सटल थे, रियल थे, और शायद इसी वजह से वो रेस में पीछे रह गए। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, ऑडियंस का ट्रस्ट। चाहे मेरे यार की शादी है हो या फिर तनु वेड्स मनु, स्क्रीन पर आते ही फील आता था ये बंदा जेन्युइन है। जिमी शेरगिल को लोगों ने कभी वर्शिप नहीं किया, लेकिन कभी इग्नोर भी नहीं किया। शायद इसीलिए वो आज भी किंग होकर भी किंग नहीं है। करेंगे जिमी शेरगिल के बारे में और भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, और मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।
1: पाका छोड़ दूं किसे चीज

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

बॉलीवुड हिस्ट्री में शायद कोई एक्टर इतनी बार ऑलमोस्ट सुपरस्टार नहीं बना जितनी बार जिमी शेरगिल बने थे। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं नन अदर देन जिमी शेरगिल की। ऑलमोस्ट बिगेस्ट रोमांटिक हीरो, ऑलमोस्ट टॉप स्टार, ऑलमोस्ट लीड एक्टर एवरीवन रिमेंबर्स। और फनी बात, उन्होंने कभी कंप्लेन भी नहीं किया, वो साइड रोल्स भी सेम सिंसेरिटी के साथ करते थे। और फिर इंटरनेट ने एक जोक बना दिया, जिमी शेरगिल हर मूवी में लड़की लूज कर देता है। ऑडियंस हंसी, लेकिन उस जोक के पीछे एक स्ट्रेंज सच्चाई भी थी। जिमी का ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी ही ऐसा था, सॉफ्ट, लॉयल, अंडररेटेड। वो बॉलीवुड के हीरो कम, ऑडियंस के दोस्त ज़्यादा लगते थे। और कैसे पंजाब ने उन्हें दिया दूसरा क्राउन, करेंगे इसके बारे में भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल आप लोग सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आप

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट वॉट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डेम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली, जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

जब बॉलीवुड ने जिमी शेरगिल को पूरी तरह सेलिब्रेट नहीं किया, तब पंजाबी सिनेमा ने उन्हें किंग बना दिया। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं जिमी शेरगिल की। और जिमी शेरगिल ने भले ही फिल्म माचिस में अपना रोल निभाया हो अच्छे से या फिर मोहब्बतें में, मगर उनको असली क्राउन पहनाया पंजाबी सिनेमा ने। जिमी शेरगिल ने पंजाबी फिल्म्स में एंट्री ली और वहाँ पिक्चर ही बदल गई। मेल करा दे रब्बा, कैरी ऑन जट्टा, दाना पानी, यहाँ ऑडियंस ने उन्हें सिर्फ एक्टर नहीं स्टार ट्रीट किया। और इंटरेस्टिंग बात, जिमी कभी ओवर द टॉप पंजाबी हीरो भी नहीं बने थे। उनका स्टाइल वही था, कंट्रोल्ड, क्लासी, नेचुरल। बॉलीवुड में वो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड थे, लेकिन पंजाब में रिस्पेक्टेड रॉयल्टी। और शायद इसीलिए पंजाब सिनेमा में आज भी जिमी को किंग कहा जाता है। और इसी के साथ साथ कैसे जिमी के रूट्स आज भी लोगों के दिलों में घर बसा गए हैं, करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

कुछ एक्टर्स ट्रेंड करते हैं, कुछ एक्टर्स टाइम सर्वाइव करते हैं। जिमी शेरगिल सर्वाइव नहीं हुए, वो साइलेंटली रेलेवेंट रहे। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और कामयाबी की उड़ान में आज हम बात कर रहे हैं जिमी शेरगिल की। बॉलीवुड एक फास्ट इंडस्ट्री है, यहाँ हर फ्राइडे नए फेजेस आते हैं, नए स्टार्स, नए इन्फ्लुएंसर्स, नए नेक्स्ट बिग थिंग। और इस नॉइस के बीच में एक एक्टर है जो कभी लाउडली अटेंशन डिमांड नहीं करता। नाम है जिमी शेरगिल। ना अननेसेसरी कॉन्ट्रोवर्सीज, ना फेक लार्जर देन लाइफ इमेज, ना सोशल मीडिया पर ओवर ब्रांडिंग। फिर भी जब भी उनका नाम आता है, ऑडियंस के फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है। क्यों? क्योंकि जिमी शेरगिल सिर्फ एक्टर नहीं लगते, वो रियल इंसान लगते हैं। उनके कैरेक्टर्स परफेक्ट नहीं होते, कभी हार्ट ब्रोकन लवर, कभी इग्नोर्ड हस्बैंड, कभी लॉयल दोस्त, कभी वो बंदा जो एंड तक सब सही करने की कोशिश करता रहता है। और शायद इसीलिए ऑडियंस उनसे कनेक्ट करती है, क्योंकि रियल लाइफ में भी मोस्ट पीपल आरंट अल्फा हीरोज, मोस्ट पीपल आर जस्ट ट्राइंग, एग्जैक्टली लाइक जिमीज कैरेक्टर। एक और इंटरेस्टिंग बात नोटिस करना, जिमी शेरगिल कभी सीन स्टील करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन समहाउ वो याद रह जाते हैं। तनु एड्स मनु में देखो, जब मूवी में केओस था, कॉमेडी थी, लाउड कैरेक्टर्स थे, लेकिन जिमी का कैरेक्टर काम, मैच्योर और हर्ट, और ऑडियंस साइलेंटली उसके साइड पर थी। इंटरनेट ने मीम्स बना दिए, हर मूवी में जिमी शेरगिल की बंदी चली जाती है। फनी था, लेकिन उस जोक ने उन्हें और रिलेटेबल बना दिया, क्योंकि ऑडियंस को लगा ये बंदा हम जैसा अनलकी है। और ऑनेस्टली किसी एक्टर के लिए ये बहुत रेयर चीज़ होती है। पीपल डोंट जस्ट वॉच हिम, पीपल फील बैड फॉर हिम। पर पंजाबी सिनेमा में उन्होंने जो रिस्पेक्ट अर्न की, वो भी ओवरनाइट नहीं आई थी, सालों लगे, कंसिस्टेंसी लगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट ईगो कंट्रोल। कई एक्टर्स जब लीड हीरो फेज से बाहर आते हैं तो इनसिक्योर हो जाते हैं, लेकिन जिमी शेरगिल उन्होंने सपोर्टिंग रोल्स भी डिग्निटी के साथ किए, नेगेटिव शेड्स भी किए, कॉमेडी भी की, सीरियस रोल्स भी किए, वो अडेप्ट करते गए। और यही डिफरेंस होता है फेमस एक्टर और लास्टिंग एक्टर में। आज अगर आप किसी भी एज ग्रुप के मूवी लवर से पूछो जिमी शेरगिल कैसे लगते हैं, तो उनका आंसर यूजुअली सेम होता है, अंडररेटेड, अच्छा एक्टर है, बहुत जेन्युइन लगते हैं। और किसी एक्टर के लिए ये रिस्पेक्ट बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि स्टारडम टेम्पररी होता है, लेकिन

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

इसी गाने के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूं आपके साथ गीत और आप सुन रहे हैं एक ऐसा शो जहां कहानियां सिर्फ सक्सेस की नहीं होती बल्कि उन सपनों की होती हैं जो कभी बहुत छोटे से शुरू हुए थे। इस शो का नाम है बिजनेस अनप्लग्ड और यहाँ मैं आपको मिलवाती हूँ उन लोगों से जिन्होंने जिंदगी की मुश्किलों को लेकर बहाना नहीं बनाया बल्कि उन्हें ही अपनी ताकत बना लिया। क्योंकि सच कहूँ तो किसी भी बड़ी कंपनी के पीछे सिर्फ नंबर्स नहीं होते, उनके पीछे होती है एक लंबी जर्नी। कभी गरीबी, कभी स्ट्रगल, कभी एक ऐसा दिन जब लगा कि शायद अब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो वहीं रुकते नहीं। आज की कहानी भी एक ऐसे इंसान की है, एक ऐसा लड़का जिसके घर की हालत इतनी मुश्किल थी कि कई बार कपड़े और चप्पल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, जिनकी माँ घर चलाने के लिए दूध बेचती थी और रोज सुबह एक पैसेंजर ट्रेन पकड़कर कॉलेज जाता और कॉलेज शुरू होने से पहले घंटों रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर पढ़ाई करता क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए कोई और जगह नहीं थी। लेकिन वही लड़का बाद में एक ऐसी कंपनी खड़ी करता है जो आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों तक में अपना नाम बना चुकी है, एक ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यू आज हजारों करोड़ रुपए में है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो इंसान है कौन जिसने रेलवे प्लेटफॉर्म से शुरू होकर एक ग्लोबल बिजनेस खड़ा कर दिया। उस नाम के बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

वंस अगेन वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम. कुछ हटके शो है बिजनेस अनप्लग. मैं आपके साथ हूं गीत. और जहां मैंने बात की अभी थोड़ी ही देर पहले एक ऐसे इंसान की जिनका बचपन बहुत साधारण था, एक ऐसा लड़का जिनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, जिनकी माँ घर को चलाने के लिए दूध बेचती थी और रोज सुबह एक पैसेंजर ट्रेन पकड़कर वो कॉलेज जाते थे, घंटों रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर पढ़ाई करते थे क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, लेकिन उनके ड्रीम्स बहुत बड़े थे. तो अब वो मोमेंट आ गया है जब मैं रिवील करने जा रही हूँ आज के बिजनेस अनप्लग्ड के बिजनेस टाइकून का नाम. तो आज की कहानी है डॉक्टर ए वेलुमणि की. जी हाँ, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के फाउंडर, चेयरमैन और एमडी. आज के वक्त में थायरोकेयर सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुकी है. इस कंपनी के 950 से ज्यादा ब्रांडेड आउटलेट्स और 5000 से ज्यादा नॉन ब्रांडेड आउटलेट्स हैं. और इसका बिजनेस सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और वेस्ट एशिया तक फैला हुआ है. आज इस कंपनी का मार्केट कैप करीब 6600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है. लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे एक ऐसी जर्नी छुपी हुई है जिसमें गरीबी भी थी, स्ट्रगल भी था और कई ऐसे मोमेंट्स भी थे जब सब कुछ आसान नहीं था. तो आखिर कैसा था ए वेलुमणि का चाइल्डहुड, कैसे एक छोटे से गांव का लड़का धीरे धीरे साइंटिस्ट बना और फिर साइंटिस्ट से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, उनकी फैमिली, एडुकेशन और लाइफ की शुरुआती इयर्स की कहानी आज मैं बताने वाली हूँ. लेकिन अभी वक्त है गाने का. गाने के बाद फिर से लौटूंगी. शो है बिजनेस अनप्लग्ड और आप मेरे साथ बने रहिए.

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल।

आपके साथ हूं गीत और आज मैं बात कर रही हूं थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के फाउंडर ए वेल्यूमनी के बारे में। क्योंकि अक्सर हम किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसकी सक्सेस दिखती है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे जो जर्नी होती है वो बहुत कम लोग जानते हैं। और वेल्यूमनी की स्टोरी तो सच में एक ऐसी स्टोरी है जो हमें ये सिखाती है कि अगर फोकस स्ट्रांग हो तो रिसोर्सेज की कमी भी इंसान को रोक नहीं सकती। ए वेल्यूमनी का जन्म तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास एक छोटे से गांव में हुआ। इनका परिवार बहुत ही ज्यादा साधारण था, बल्कि यूं कहें कि फाइनेंशियल कंडीशन काफी कमजोर थी। इनके फादर एक पुअर फार्मर थे, लेकिन इनके पास खुद की जमीन भी नहीं थी। मतलब खेती करते थे लेकिन जमीन इनकी नहीं थी। घर में चार बच्चे थे और इतने बड़े परिवार को चलाना आसान नहीं था। ऐसे में वेल्यूमनी की माँ ने घर की जिम्मेदारी संभाली। वो दूध बेचकर घर का खर्चा चलाती थी। इमेजिन कीजिए, जब घर में इनकम इतनी लिमिटेड हो तब बच्चों को पढ़ाई करवाना कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वेल्यूमनी की माँ चाहती थी कि उनके बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, और शायद यही बिलीव था जिसने वेल्यूमनी के अंदर भी एडुकेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन पैदा किया। उन्होंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से पूरी की और उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए वो कोयम्बटूर चले गए। लेकिन यहाँ चैलेंज और बड़ा था। सिटी के कॉलेजेस की फीस उस टाइम लगभग 1,000 से 3,000 रुपए तक होती थी। ये उनके लिए पॉसिबल नहीं था। फिर उन्होंने एक ऑप्शन चुना, श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय। ये कॉलेज शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर था। यहाँ फीस कम थी, करीब 300 रुपए, लेकिन हॉस्टल का खर्चा फिर भी उनके लिए अफोर्डेबल नहीं था। उन्हें एक गवर्नमेंट हॉस्टल मिल गया जो फ्री था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ तक आने जाने का खर्च भी उनके लिए मुश्किल था। बस का किराया एक तरफ लगभग 60 पैसे था, मतलब महीने का लगभग 30 रुपए। ये भी उनके बजट से बाहर था। लेकिन वेल्यूमनी ने यहाँ भी एक सोल्यूशन निकाल लिया। उस रूट पर एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी। उस ट्रेन का 3 मंथ स्टूडेंट पास सिर्फ 7 रुपए था और यही उनका डेली रूटीन बन गया। वो रोज सुबह 5 बजे की ट्रेन पकड़ते थे जो उन्हें 6:25 पर कोयम्बटूर पहुंचा देती थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि कॉलेज लगभग 9 बजे शुरू होता था, मतलब उनके पास लगभग 2.5 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम होता, और शाम को भी ट्रेन 6:10 की थी, तो कॉलेज खत्म होने के बाद भी काफी टाइम बच जाता था। यानी हर दिन उनके पास लगभग 6 घंटे का खाली समय होता। अब कोई भी स्टूडेंट होता तो शायद इस समय को वेस्ट कर देता, लेकिन वेल्यूमनी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस टाइम को अपनी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी बना लिया। वो रोज रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर पढ़ाई करते थे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लगभग 1,000 दिन तक और करीब 6,000 घंटे इन्होंने प्लेटफॉर्म पर बैठकर पढ़ाई की। कभी कभी लाइफ हमें परफेक्ट एनवायरमेंट नहीं देती, लेकिन अगर डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो तो इंसान कहीं भी सीख सकता है। वेल्यूमनी बाद में कहते हैं, दैट रेलवे प्लेटफॉर्म एक्चुअली मेड मी अ साइंटिस्ट। और सच में वही डेडिकेशन उन्हें आगे लेकर गया। सिर्फ 19 साल की उम्र में इन्होंने बीएससी डिग्री पूरी कर ली, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद भी लाइफ आसान नहीं हुई। अब एक नया चैलेंज उनका इंतजार कर रहा था और वो था करियर शुरू होने का। उन्होंने छोटी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब शुरू की, लेकिन वहाँ जो उनको सैलरी मिलती थी वो इतनी कम थी कि शायद आज के टाइम में सुनकर लोगों को यकीन भी ना हो, लेकिन उस जॉब ने इनको बहुत बड़ा लेसन दिया और वही लेसन आगे चलकर उनकी जर्नी की शुरुआत बनने वाला था। क्या था वो मोमेंट, कैसे एक साइंटिस्ट बनने की जर्नी शुरू हुई और लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट क्या था जो वेल्यूमनी को बिजनेस की तरफ लेके आया है, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

हे ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज्यादा और ज्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो है मन उदास का पे आवाज फिर भी मैं जोड़ के हाथ जो भी है पास है उस पे नाज बस कहना है थैंक्स अ लॉट।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है बिजनेस अनप्लग्ड और हम बात कर रहे हैं ए वैल्यू मनी के बारे में। ए वैल्यू मनी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और किस तरह रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर वो घंटों तक पढ़ते रहे, लेकिन असली टेस्ट तो शुरू होता है जब पढ़ाई खत्म हो जाती है और लाइफ में करियर स्टार्ट करने का टाइम आता है। वैल्यू मनी की कहानी में भी यही फेज आया। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने कोयम्बटूर की एक छोटी सी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब शुरू की। अब सैलरी सुनिए, सिर्फ 150 रुपए महीना। आज के वक्त में शायद ये बहुत छोटा अमाउंट लगे, लेकिन उस टाइम ये कोई बड़ी सैलरी भी नहीं थी। लेकिन यहाँ एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, वैल्यू मनी अपनी सैलरी में से 100 रुपए हर महीने अपनी माँ को भेज देते थे और बाकी 50 रुपए में पूरा खुद का महीना मैनेज करते थे। इमेजिन कीजिए, 50 रुपए में पूरा महीना। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन अचानक ये कंपनी बंद हो गई और वैल्यू मनी बेरोजगार हो गए। अब सिचुएशन फिर वही थी, अनसर्टेनिटी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी एक प्रॉब्लम के रूप में आती है। वैल्यू मनी ने हार नहीं मानी, इन्होंने अप्लाई किया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए और उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था BARC में काम करते हुए। इन्होंने सिर्फ जॉब ही नहीं बल्कि अपनी हायर स्टडीज भी पूरी की। धीरे धीरे चलकर रिसर्च फील्ड में इन्होंने अपनी पहचान बनाई और आगे चलकर वो साइंटिस्ट बन गए। लगभग 14 साल तक इन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम किया। एक स्टेबल जॉब, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन, कई लोग यहीं सेटल हो जाते। लेकिन वैल्यू मनी के माइंड में कहीं ना कहीं एक थॉट बार बार आता था, क्या मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू कर सकता हूँ? और यही थॉट धीरे धीरे ड्रीम बन गया। लेकिन ड्रीम को रियलिटी में बदलना आसान नहीं था, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है रिस्क, करेज और सपोर्ट। और वैल्यू मनी की लाइफ में एक ऐसा सपोर्ट था जिसने उस ड्रीम को रियलिटी बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। वो सपोर्ट था उनकी वाइफ का। कौन थी वो और कैसे इन्होंने वैल्यू मनी के साथ मिलकर एक छोटी सी लैब से एक बड़ी कंपनी की फाउंडेशन रखी, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस गाने के बाद हम फिर से लौटेंगे। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही हूँ ए वैल्यू मनी के जर्नी के बारे में। कैसे इन्होंने साइंटिस्ट के तौर पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में लगभग 14 साल तक काम किया, एक स्टेबल जॉब, रिस्पेक्टेबल पोजीशन, लाइफ आराम से चल सकती थी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें कम्फर्ट जोन में रहना पसंद नहीं होता। वैल्यू मनी के माइंड में भी एक थॉट बार बार आता था, कुछ अपना करना है, समथिंग ऑफ माई ओन। और आखिरकार 1995 में इन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और अपनी सेविंग से एक छोटी सी लैब शुरू की। ये पैसा भी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, लगभग 1 लाख, जो उनके पीएफ से आया था, और यहीं से शुरू हुई थायरोकैट टेक्नोलॉजीज की जर्नी। लेकिन शुरुआत भी आसान नहीं थी, उनकी लैब मुंबई में थी और शुरू के दिनों में सिर्फ रोज 2 सैंपल्स आते थे। यस, सिर्फ 2 सैंपल्स अ डे। कई लोग ऐसे मोमेंट पर शायद हार मान लेते हैं, लेकिन वैल्यू मनी ने पेशेंस नहीं छोड़ा। उनका विजन बहुत क्लियर था, डायग्नोस्टिक टेस्ट को अफोर्डेबल बनाना ताकि आम लोग भी आसानी से मेडिकल टेस्ट करवा सकें। धीरे धीरे इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल डेवलप किया, कम कॉस्ट, हाई वॉल्यूम और वाइडर रीच। और यहीं पर उनकी लाइफ में सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी था। जब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी तो उनकी वाइफ सुमति वैल्यू मनी ने SBI की अपनी जॉब छोड़ दी और कंपनी में भी उनका साथ दिया। वो सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं थी बल्कि कंपनी की फर्स्ट एम्प्लॉय भी थी। दोनों ने मिलकर दिन रात मेहनत की, धीरे धीरे लैब्स बढ़ने लगी, सैंपल कलेक्शन सेंटर बनने लगे और थायरोकेयर का नेटवर्क एक्सपेंड होने लगा। आज थायरोकेयर के 950 से ज्यादा ब्रांडेड आउटलेट्स और 5000 से ज्यादा नॉन ब्रांडेड आउटलेट्स है, और इसका बिजनेस सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और वेस्ट एशिया तक फैला हुआ है। आज कंपनी का मार्केट कैप लगभग 6600 करोड़ के आसपास है। लेकिन सक्सेस की इस जर्नी में एक ऐसा मोमेंट भी आया जो शायद बहुत इमोशनल था। 2016 में थायरोकेयर का IPO आने वाला था। ये वैल्यू मनी के करियर का बहुत बड़ा माइलस्टोन था, लेकिन उसी समय वाइफ सुमति वैल्यू मनी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। 12 फरवरी 2016 को वो दुनिया से अलविदा कह गई और कुछ ही महीनों बाद कंपनी का IPO लॉन्च हुआ जो लगभग 73 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। वैल्यू मनी अक्सर कहते हैं, मेरी अर्ली लाइफ की इंस्पिरेशन मेरी माँ थी और मेरी बिजनेस सक्सेस की वजह मेरी पत्नी थी। उनकी जर्नी हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देती है, सक्सेस

हमेशा बड़े रिसोर्सेज से नहीं आती, कभी कभी सक्सेस सिर्फ फोकस, डिसिप्लिन और पेशेंस से आती है। और शायद इसीलिए कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठकर पढ़ने वाला लड़का आज हजारों करोड़ की कंपनी का फाउंडर बन गया है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, मैं हूं गीत और आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। और याद रखिए, ड्रीम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे पूरा करने का करेज बड़ा होना चाहिए। टेक केयर एंड कीप ड्रीमिंग बिग। और सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है गर्मियों में कि फ्रिज का पानी पिया हो पर फिर भी दिल को सुकून ना मिला हो, और फिर किसी ने एक मिट्टी के मटके से स्टील के ग्लास में पानी दिया हो, ना तो आइस ना कूलिंग बटन, फिर भी पहला घूट ही सीधा रूह तक उतर गया हो। वो कहा है कि जो सुकून मिट्टी की ठंडक में होता है वो शीशे की ठंडी बॉटल्स में कहां। और इसी के साथ रेडियो महारानी 89.6 FM पर मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि, और शो लेकर आ गई हूं कल्चर कारवा, जहां आज बात होगी एक ऐसी चीज की जो सिंपल भी है, साइंटिफिक भी और इमोशनल भी, यानी मटका। बात करें मटके की तो आइए पहले ये जानते हैं आखिर कितना पुराना है ये। मटका कोई मॉडर्न इनोवेशन नहीं, इंडिया में हजारों सालों से मिट्टी के बर्तन यूज होते हुए आए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक्सकेवेशन में भी मिट्टी के पॉट्स और वाटर वेसल्स मिले हैं। अब सोचिए जरा, जब ना फ्रिज था ना इलेक्ट्रिसिटी, तब ये सारी चीजें आखिर आई कहां से? तब इंसान ने मिट्टी में ही कूलिंग सिस्टम ढूंढ लिया। वो कहते हैं ना, नेचर के सबसे बड़े इनोवेशंस अक्सर नेचर से ही आता है। और इसी के साथ वापस आकर जानेंगे आखिर मटका पानी ठंडा कैसे करता है। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी की 9.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज बात कर रहे हैं उस जादुई मटके की जहां पानी अपने आप ठंडा हो जाता है। तो आइए चलिए जानते हैं आखिरकार मटका पानी ठंडा कैसे करता है। अब जरा इसके पीछे का साइंस जानिए। मटका मिट्टी का बना होता है और मिट्टी में होते हैं छोटे छोटे पोरस। उन छोटे छोटे होल से थोड़ा थोड़ा पानी बाहर आता है और बस धीरे धीरे हवा के कांटेक्ट में इवोपरेट होता है और बस इस इवोपरेशन प्रोसेस की वजह से अंदर का पानी नेचुरल कूल हो जाता है। मतलब मटका इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, नेचर के साइंस से चलता है। वो कहा है कि जो चीजें कुदरत के करीब होती हैं वो अक्सर सेहत के भी करीब होती हैं और इसीलिए गर्मियों का असली हीरो कहा जाता है मटके को। एक टाइम हुआ करता था जब हर घर के कोने में मटका होता था। उसके नीचे छोटा सा स्टैंड, ऊपर एक स्टील का ग्लास और बार बार मम्मी की आवाज, फ्रिज का नहीं मटके का पानी पियो, क्योंकि मटके का पानी सिर्फ ठंडा नहीं होता, सॉफ्ट और अर्थी भी होता है। जैसे उसमें मिट्टी की खुशबू घुल गई है। और मटके के पीछे का ना एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन है, वो है कुमार और मिट्टी का रिश्ता। इस कनेक्शन के बारे में भी जानेंगे लेकिन वापस आकर। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।
0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं मिट्टी के मटके के बारे में, जहां सबसे खास रिश्ता है कुम्हार और मिट्टी का रिश्ता। मटका सिर्फ एक वेसल नहीं, एक आर्ट है और इस आर्ट के पीछे होते हैं आर्टिस्ट, जिन्हें कहते हैं कुम्हार। वो लोग जो मिट्टी को शेप देकर रोजमर्रा की जिंदगी में सुकून भर देते हैं। एक सिंपल सा मटका बनाने के लिए भी मिट्टी चुनना, उसे गूंदना, चाक पर शेप देना और धूप में सुखाना पड़ता है। कहते हैं कुछ लोग मिट्टी से सिर्फ बर्तन नहीं, कल्चर बनाते हैं और इसलिए मटका और इंडिया कल्चर बहुत पुराना है। इंडिया में मटका सिर्फ पानी रखने के लिए नहीं था, सर्दियों में फेस्टिवल्स में और रिलीजियस रिचुअल्स में भी मटके का स्पेशल इम्पोर्टेंस रहा है। कई जगह तो मटका प्रॉस्पेरिटी और लाइफ का सिंबल माना जाता है, क्योंकि पानी और मिट्टी दोनों ही जीवन के बेस हैं। वो कहा है कि जिस मिट्टी से हम बने हैं, शायद सुकून भी उसी में छुपा होता है। अब वापस आकर जानेंगे फ्रिज वर्सेस मटके की जंग। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवां। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं मटके के बारे में। तो चलिए फिर जानते हैं फ्रिज वर्सेस मटका। अगर बात करें फ्रिज की तो फ्रिज आज हर घर में है, पर फिर भी समर आते ही लोग मटका खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिज पानी को आइस कूल करता है पर मटका उसे जीता हुआ रखता है। मटके का पानी न ज्यादा ठंडा न शॉक देने वाला, बस परफेक्ट। और हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर बॉडी के लिए आइडियल नहीं होता, और यही रीजन है मटका सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं, समर मेमोरीज है। दोपहर की गर्मी, कूलर की आवाज, आंगन और मटके के पास रखा ग्लास। कभी कभी लगता है पुरानी गर्मियां ज्यादा खूबसूरत थी, शायद इसलिए क्योंकि तब चीजें नेचुरल थी और वक्त भी थोड़ा धीरे चलता था। वो कहा है कि पुरानी गर्मियों में एसी कम थे पर सुकून ज्यादा था। मटका हमें एक सिंपल सी बात सिखाता है कि सिंपलिसिटी कभी आउटडेटेड नहीं होती, और कुछ चीजें टेक्नोलॉजी से नहीं ट्रेडिशन से बेटर चलती हैं। वो कहा है कि ना बैटरी चाहिए ना बटन का सहारा। मिट्टी का मटका आज भी गर्मी को हरा देता है, जो जुड़ा हो जमीन से वही असल सुकून देता है। अगली बार गर्मी लगे तो एक ग्लास मटके का पानी जरूर पीना, हो सकता है ठंडक सिर्फ गले तक नहीं यादों तक पहुंच जाए। और इसी के साथ अब मेरा वक्त हो गया है यहाँ से जाने का। कल फिर से मिलेंगे एक और सिंपल सी चीज में छुपी एक बड़ी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज

0: में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
4: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
3: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: महारानी का।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: ओ जी वो तो हम है ही, मतलब कुछ हटके तो हम है ही, और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा फरीदाबाद भी कुछ हटके है। स्वागत है जी सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हो आप सब? मुझे लगता है अभी ऑफिस से निकल गए हो, अगर नहीं भी निकले हो और जहां पर भी बैठ के मुझे सुन रहे हो, अगर गाड़ी में सुन रहे हो तो गाड़ी ध्यान से चलाइएगा, और साथ ही साथ अगर घर बैठ के मुझे सुन रहे हो तो फिर बस एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक गाने चलाऊंगा। और हाँ, अभी बस मैं ये बताने आया था कि मैं आ गया हूँ, करते हैं बात और भी मगर इस गाने के बाद।

और जी डोला भी आ जाएगा अगर आप लोग टाइम से जिम जाओगे तो। स्वागत है सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हो आप सब? शाम हो गई है और मैं बस इतना बताने आया था कि देखो जैसा भी है सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मतलब ये कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ना तो टेंशन मत लो, दिस टू शैल पास। हाँ, सारे बुरा वक्त चला तो जाता है, रात के बाद ही सवेरा होता है, और यही पॉजिटिविटी लेकर मैं आ चुका हूँ आप सभी के साथ और बहुत सारी बातें करेंगे आज। आपने कभी ये सोचा लोग क्या कहेंगे? क्योंकि हम लोग अक्सर यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और कभी आपने ये सोचा कि सिर्फ एक मैसेज जो आप भेजना चाहते हो पर आप भेज नहीं पा रहे हो, मतलब आप एक इंसान को मैसेज भेजना चाहते हो सकता है आप लोग एक जॉब को अप्लाई करना चाह रहे हो बट आप अप्लाई कर नहीं पा रहे, आपको लगता है कि आप अपने फैमिली से दूर हो जाओगे, अपने दोस्तों से दूर हो जाओगे, बहुत सारी चीज़ें मन में आती है। तो आज बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर मैं आप सभी के साथ आ चुका हूँ और अगले 3 घंटे तक खूब सारी बातें होंगी, मस्ती होंगी और गाने भी चलते रहेंगे मेरे दोस्त। तो एक गाना तो मैं चला रहा हूँ बट हाँ, अगर इसी बीच अगर आप लोगों को मुझसे बातें करनी है तो नंबर है जी 9654896896। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर आप सभी के लिए एक गाना सुनिए, इस गाने को मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

ना दे एक्सेस लोगो नू तेनु नित दा रोना पै जूगा। एक्सेस का मतलब अपनी लाइफ का एक्सेस किसी को भी मत दो। स्वागत है जी सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हो आप सब? शाम हो गई है और ये गाना था जोगी, ओरिजिनल वाला तो नहीं था, रिमिक्स वर्जन था ये। और इसी गाने के साथ साथ स्वागत है जी आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। कभी आप लोगों ने सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? ऑब्वियसली बात है, सबने सोचा होगा। और ये ना बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है लोगों को। एक्चुअली मैं ये एक इनविजिबल सीसीटीवी की तरह है और ये सोसाइटी का सीसीटीवी है। हम लोगों के मन में हमें लगता है कि सब लोग देख रहे हैं हम लोगों को लोग करेंगे क्या, कहेंगे क्या, और हर डिसीजन पे हम लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जैसे हमारे पास नोटिफिकेशन आता है ना, एक पॉपअप आता है, वैसी टाइप का एक पॉपअप हमारे माइंड में आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे। हम अपनी लाइफ जी रहे हैं या लोगों की एक्सपेक्टेशन का प्रोजेक्ट है, बताओ। नहीं नहीं, एक होता है ना कि हम लोगों की अपनी अपनी लाइफ है, हमें अपनी लाइफ जीनी चाहिए और वो भी खुल के जीनी चाहिए। और आप लोग एक बात लिख के ले लो, जो भी इंसान लोगों की परवाह नहीं करता ना कि लोग क्या कहेंगे, वो इंसान बहुत ज़्यादा खुशहाल जिंदगी बिता रहा है। सोसाइटी में कहीं पर भी देख लो, उसके बारे लोग यही कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। तो कभी कभी लोग एक्चुअली उतना सोचते ही नहीं है जितना हम अज्यूम कर लेते हैं। तो आज से, अभी से मैं बस यही बोलना चाहूंगा, स्टे पॉजिटिव और अपने माइंड से ये सारी चीजें निकाल दो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। बिल्कुल। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए एक गाना चला देता हूं और वापस आकर बात करेंगे आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में। क्या बात करेंगे बेस्ट फ्रेंड के बारे में? चलिए अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में जरा सोचिए, फिर वापस आकर बात करते हैं। मगर उससे पहले आप सभी के लिए ये गाना।

आमद सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन
2: ना, निवाना।

क्या आप लोगों को अपने उस दोस्त के बारे में याद है जिसके ऊपर आपने निबंध लिखा था, एक छोटा सा एक पैराग्राफ लिखा था, माय बेस्ट फ्रेंड? याद है ना, बचपन में हम लोगों को ये लिखने के लिए दिया जाता था। स्वागत है जी सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों ने कौन से मीडियम में पढ़ाई की है, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम, हर जगह ये चीज लिखवाई जाती थी बचपन में कि मेरा खास मित्र, मेरा परम मित्र और माय बेस्ट फ्रेंड, इसके ऊपर चीजें लिखवाई जाती थी और पूछा जाता था कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। मुझे तो याद भी नहीं भाई मैंने किसके लिए लिखा था, बट स्टिल आज की डेट में हम सभी की लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड जरूर होता है। हो सकता है वो हमारे ऑपोजिट जेंडर का हो सकता है वो हमारे सेम जेंडर का हो, बट एक बात तो है, जो लड़का लड़का दोस्त होते हैं ना, उनके बीच में ना गिले शिकवे बहुत कम होते हैं, अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम गिले शिकवे कम होते हैं। तो बेस्ट फ्रेंड क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड को सब पता होता है या फिर सिर्फ उसको हाइलाइट्स पता होती है? देखो काफी केसेस में ऐसा होता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, जो आप अभी रिलेट कर पा रहे होगे इस चीज से, कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है ना उसको आपकी सारी चीजें पता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक 95% आपकी लाइफ के बारे में उसको पता होगा, और हो सकता है कि आपको उसकी लाइफ का कुछ भी नहीं पता होगा। हो सकता है वो इंसान आपसे झूठ बोलता होगा, हो सकता है वो आपसे सारी बातें शेयर करता होगा। तो देखो हर इंसान के पास एक हिडन लेयर होती है, इवन क्लोजेस्ट लोगों के साथ भी। तो ये हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि हम लोग ना पूरी 100% जो चीज़ है वो किसी को भी नहीं बताते। हम लोग तीन फेज में जीते हैं। देखो एक होता है वो जो हम लोग सोसाइटी को दिखाते हैं, एक होता है वो जो हम अपने बेस्ट फ्रेंड को दिखाते हैं, एक होता है वो जो हम अपने आप को दिखाते हैं, और हाँ इसमें वो भी है जिसमें हम लोग अपने पेरेंट्स को एक अपना वर्जन दिखाते हैं। तो आप लोग कौन सा वर्जन जी रहे हो अभी इस टाइम बताइएगा ज़रूर। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ और वापस आकर बात करते हैं कुछ इमोशंस की। आज इमोशंस वाली बातें चलती रहेंगी, मगर उससे पहले ये गाना।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: जीवन पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

चेहरे पे फेक स्माइल लेके चलना पड़ता है जैसे कि बॉस के सामने। आप लोग पूरा परेशान हो गए अपने बॉस से, मगर फिर भी बॉस के सामने जब जाओगे तो स्माइल लेके जाओगे। और एक होता है रियल इमोशंस दिखाते हैं हम लोग, और इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है रील और एक होता है रियल। तो रील वाली चीज़ हमेशा हम लोग सोशल मीडिया पर करते हैं, इंस्टाग्राम पर सब हैप्पी, रियल लाइफ में क्या होता है, बफरिंग बफरिंग बफरिंग, सब कुछ अटक जाता है, ऐसा लग रहा है हैंग हो रही है लाइफ हमारी। तो हम अपनी असली फीलिंग कितनी बार हाइड करते हैं, ये सवाल है मेरा। मतलब आप अपने आप से ज़रा प्रोसेस कीजिए, अपने मन को प्रोसेस कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपनी असली फीलिंग्स को छुपाते हैं, हम लोग अपनी अपनी ख्वाहिशें छुपा देते हैं, क्योंकि काफ़ी बार होता है सर्कमस्टेंसेज ऐसे ऐसे आते हैं जहाँ पर हम लोगों को शांत होना पड़ जाता है, मानते हो कि नहीं। तो चलिए इसी के साथ साथ बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि आप लोग जितनी भी टेंशन में हो ना, वो सब टेंशन निकाल के दूर फेंक दीजिए। और भी बातें करेंगे, अगर आप लोगों को मुझसे बातें करनी है तो नंबर है जी 9654896896। आप लोग बस इतना बोलो आई एम फाइन, दुनिया के सामने यही बोलते हैं ना हम लोग, सबसे बड़ा झूठ है। तो चलिए आई एम फाइन मैं भी बोल रहा हूँ और आप लोगों के लिए गाना चला रहा हूँ। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: मेरे।
1: लाइफ में क्या चाहिए, संडे हो, सोफा हो और टीवी पे चल रहा हो कोई भी ओटीटी। स्वागत है जी सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सभी की लाइफ में ये चीज तो होती रहती है कि हम लोग एक दिन ऐसा चाहते हैं जहां पर हम लोग बैठ के रिलैक्स कर सके। अब बट रिलैक्स से एक चीज समझ नहीं आती मुझे, काफी लोग रिलैक्सेशन के नाम पर कुछ और ही करने लग जाते हैं, तो वो चीज नहीं करनी आपको। मतलब कुछ और एज इन के रिलैक्स करेंगे संडे को, उनके प्लान होंगे कि संडे को रनिंग करने चल रहे हैं, साइकिलिंग करने चल रहे हैं, दैट्स गुड, बट रिलैक्स इज रिलैक्स, टीवी देखो आराम से लेट के। सवाल ये है कि आप लोगों ने मैक्सिमम कितने घंटे तक बैक टू बैक टीवी देखा है। देखो मैंने तो इतना कभी देखा नहीं है, 3 से 4 घंटे मैक्स होता है क्योंकि एक मूवी आजकल तो इतनी बन रही है। बट मेरी नानी, उनके लिए मैं देवों के देव महादेव चला देता हूँ, तो वो पूरे 5-5, 6-6 घंटे तक वो बैक टू बैक देखते रहती हैं। तो इट्स ओके, लाइक ठीक है, बट मुझे लगता है क्या ये रिलैक्सेशन है या फिर हम लोग बस एक एस्केप ढूंढ रहे हैं कि यार बहुत हो गया, पूरे हफ्ते का स्ट्रेस है, संडे आए फिर उसके बाद हम लोग टीवी देखेंगे आराम से बैठ के। आप लोग बताइए। और हाँ, डिफरेंस क्या है एंजॉय करने में और बस टाइम पास करने में? एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ना कि हम लोग एंजॉय करते हैं और कुछ लोग के लिए वो एंजॉयमेंट टाइम पास होता है। तो मैं कुछ लोगों का मतलब ये है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, उन लोगों को लगता है अगर ये लोग संडे को एंजॉय करने जा रहे हैं तो ये टाइम पास करने जा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग बताइए आप लोगों को क्या लगता है। और हाँ, एक और चीज़, जो चीज़ आपको खुशी दे वो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं हो सकती, ये चीज़ अपने मन में बिठा लीजिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। नंबर है जी हमारा 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना रेडियो।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

हो सकता है आप लोगों ने कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहा हो बट मेल नहीं कर पाए काफी सारे रीजंस की वजह से। स्वागत है सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। गाने का नाम था दिल लगाना मना था, मगर काफी बार दिल लग जाता है आपका अपने ऑफिस में। नहीं नहीं, सिर्फ ऑफिस से, बाकी चीजों से नहीं, कलीग से नहीं ब्रो। चलिए, मैं इसी बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं पर मेल डालना चाहते हैं, कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, मगर वो मेल हम लोग भेज नहीं पाते। क्यों? इमोशंस की वजह से। इमोशंस में बह जाते हैं। पहले भी यही बोल रहा था, मैं अभी भी यही बोलूँगा कि हम लोग इमोशंस में बह जाते हैं। हम लोग वो मेल नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज हम लोगों को लगता है हम लोग अपने पेरेंट्स से दूर हो जाएंगे, फैमिली से दूर हो जाएंगे, दोस्तों से दूर हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अगर अपनी लाइफ में ग्रोथ देखना चाह रहे हो तो आपको मूव करना पड़ेगा। चेंज इज द नीड। हाँ, ये नीड होती है बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ इसमें एक बात आती है और उसे कहते हैं अनसेंट मैसेजेस। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान होता है जो हमारे बहुत क्लोज था किसी टाइम, बट आज की डेट में वो आपके क्लोज क्या कोसों दूर है आपसे, पर आप चाहते हो उससे बात करना, बट फिर भी हो सकता है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा, मतलब गुस्सा होगा, नाराज़गी होगी कि आप वो मैसेज नहीं भेज पा रहे। एक मैसेज जो आप भेजना चाहते हो पर भेज नहीं पा रहे हो, और इसमें हो सकता है कि वो आपके एक्स हो सकते हैं, वो आपके क्रश हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर किसी को भी रैंडमली तो आप मैसेज भेजना चाह रहे हो। इसमें एक बहुत ही अच्छा मतलब एक तरीका है, आपको बताता हूँ, और वो तरीका ये है कि जिस भी दिन आपको छुट्टी मिले उस दिन बैठना और रैंडमली 10 कॉन्टैक्ट्स को कॉल करना, अपने नॉन लोगों को नहीं, मतलब जिनसे बहुत कम बात होती है उनको कॉल करना और उनसे बस हालचाल पूछना और उसके बाद फ़ोन कर देना, देखना आपके रिलेशंस कितने स्ट्रांग हो जाएंगे। चलिए, अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए एक गाना, ये वाला जैकेटा लाइटा वाली गाना।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डेम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

अगर इस गाने को सुन के भी आपके अंदर एनर्जी नहीं आई फिर तो कैसी आ सकती है। डोंट वरी, मैं ले आऊंगा एनर्जी जी आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे गाने चलाऊंगा। फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी का स्वागत करता हूं जी। गौरव है मेरा नाम, द मोस्ट वांटेड मुंडा कहते हैं मुझे। और इसी के साथ साथ फर्स्ट इंप्रेशन का भी सोचा आप लोगों ने, मतलब होता है ना काफी बार कि हम लोग किसी को देखते ही जज कर लेते हैं, तो ऐसे ही कोई और इंसान भी हो सकता है कि आपको जज कर रहा हो। फर्स्ट इंप्रेशन वर्सेस रियलिटी, पहली नजर में जजमेंट होता है, फिर बाद में रिग्रेट होता है, अरे नहीं यार हमने तो इस इंसान को गलती जज कर लिया। क्योंकि काफी सारे लोग दिखने में बड़े भोले होते हैं मेरी तरह, बट होते नहीं है असली में भोले, बट मैं बोला हूँ डोंट वरी। और काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग ना इंसान को देख के जज कर लेते हैं, भाई ये तो क्रिमिनल माइंडेड होगा, ये तो ऐसा होगा, ये तो वैसा होगा, बट ऐसा नहीं होता, बाद में फिर हमें रिग्रेट होता है। तो आप लोग बताओ कितनी बार आप किसी को गलत समझ बैठे सिर्फ और सिर्फ देख कर कि उसने कपड़े खराब पहने थे। मगर यहाँ पर एक लाइन आती है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। जज करना चाहिए, थोड़ा बहुत जज करो, बट हाँ एक माइंडसेट मत बनाओ। और इसी के साथ साथ लोग बदलते नहीं हैं, हम उन्हें बेटर समझने लगते हैं। रियलिटी ये होती है कि सामने वाला इंसान जब हमारी कॉन्टैक्ट में आता है फिर हमें पता लग जाता है अरे ये तो इतना सिंपल इंसान है। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए गाने चला रहा हूँ, वापस आकर और भी ढेरों बातें होती रहेंगी मेरे दोस्त।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

0: हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा थी, छोटी छोटी बातों पे हम लोग हंस दिया करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, कोई माइंड गेम्स नहीं खेलते थे हम लोग एक दूसरे के साथ। बट आज की डेट में क्या होता है, ऑफिस पॉलिटिक्स सब कुछ भाई बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है, इन सबको साइड में रखते हैं। और देखो टीचर्स की भी याद आती थी, क्योंकि टीचर्स के फनी मोमेंट्स होते थे काफ़ी बार, कुछ लोग बंक मार लेते थे स्कूल से ही, कुछ लोग बंक मारते थे सिर्फ पीरियड से, और कुछ लोग कॉलेज तो बंक मारते ही थे। तो आप लोग बताइए, आप लोगों ने कभी कॉलेज या स्कूल बंक किया है? नंबर है जी 9654896896। आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर एक गाना चला रहा हूँ, वापस आकर और भी ढेरों बातें होती रहेंगी।
1: करण औजला इन द चाल प्रूफ

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

है, फन भी है, प्यार भी है, गन भी है, लड़ना पैमान भी है, मिले जे कोई चाहता है।

क्या आप लोग किसी ऐसे इंसान से मिले हो जो कि अकेले रहता हो, आपके घर के आसपास हो, आपका दोस्त हो सकता है, और आप लोग सोचते हो कि यार इसकी लाइफ कितनी बढ़िया है। कभी पूछा भी है उस इंसान से कि वो खुश है भी या नहीं? हो सकता है आप ही वो इंसान हो जो कि अकेले रह रहे हो और शायद असलियत में खुश भी हो, और हो सकता है आप खुश ना भी हो। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। ये गाना था सेम बीफ सिद्धू मूसेवाला की आवाज़ में, और इसी गाने के साथ साथ मैं वापस से आप सभी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त है, मतलब अभी भी है वो, मगर वो पहले फरीदाबाद में रहता था और अकेले रहता था, और वो कहता था यार तेरे मजे। मैंने कहा क्यों? कहता तेरे को रोज घर का खाना मिल जाता है। एंड आई वॉज लाइक सही कह रहा है ब्रो, जो लोग अपनी फैमिली के साथ रहते हैं ना वो लोग डेली खाना तो खा सकते हैं घर का मतलब, बट जो लोग अकेले रहते हैं उनके भी अलग अलग फायदे होते हैं। तो देखो आप बताओ, आपको अकेले रहना पसंद है या फिर मजबूरी में रह रहे हो? क्योंकि मेरा दोस्त तो मजबूरी में रह रहा था, उसको कॉलेज करना था फरीदाबाद से, इसलिए वो फरीदाबाद में रह के कॉलेज पढ़ रहा था, बट वो था एमपी का। एंड लाइक अभी जब मैं लास्ट टाइम उससे मिला तो ही वॉज लाइक यार कॉलेज के दिन बड़े याद आते हैं। मैंने कहा बिल्कुल याद आते हैं। देखो होता है काफ़ी बार हम लोग अकेलापन एंजॉय भी करते हैं, काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हम लोग अकेले में सिर्फ एडजस्ट हो रहे होते हैं। हो सकता है कि आप लोग किसी और स्टेट के रहने वाले हो मगर फरीदाबाद में रह रहे हो, किसी मजबूरी की वजह से रह रहे हो, सकता है अपनी जॉब की वजह से रह रहे हो। तो कभी कभी सबके बीच में भी एक इंसान अकेला फील करता है, ये भी होता है ना कि इंसान वैसे तो सबके साथ रहता है बट फिर भी अकेला फील करता है। तो चलिए इसके बारे में जरा आप सोचिए। और अभी फिलहाल आप सभी के लिए सिद्धू मूसेवाला, दिलजीत दोसांझ, आतिफ असलम और भी लोगों की AI कवर गाना सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

தானியட டீப் கோனர் मेरे कमरे में डंगा डंगा क्लीन एंड नीट कोने मैंने रात ने सुननी बीट टाइम मेरे तरह लीड कोने आई एम जीओडी आना कदे मेरा पीक कोने स्प्लेंडर पे बैठ जा गोरी मेरे तरह जीप कोने

गाने का नाम है टोटल और मेरी लाइफ में टोटल कुल मिलाकर पैसे बहुत कम बचे हैं। देखो महीना भी खत्म ही नहीं हुआ है, बट ऐसा सबके साथ हो रहा है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हर इस इंसान की जो कि जॉब कर रहा है। हो सकता है आप बिजनेस भी कर रहे हो, ऐसा ही सीन हो आपके साथ की पेमेंट आने वाली हो। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। देखो काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग ना जैसी सैलरी आती है वैसी हम लोग वो पसंद की चीज़ें जो हमने कार्ट में ऐड कर रखी होती है, ऑनलाइन जो हम लोग शॉपिंग करते हैं तो कार्ट में चीज़ें ऐड कर लेते हैं पहले से ही, पर जैसे ही सैलरी आती है तो हम सोचते हैं हाँ खर्च कर लो खर्च कर लो खर्च कर लो, बट फिर उसके बाद लगता है हम लोगों को यार कुछ ज़्यादा ही खर्च कर दिया। तो सेविंग वर्सेस स्पेंडिंग, आप लोग क्या करते हो, आप किस टीम में हो? देखो अगर एक तरीके से देखा जाए तो प्लानर एक इंसान होता है कि वो प्लान करके चलता है हर चीज़ को। मतलब वो बोलेगा कि मैं 10,000 रुपये इस चीज़ पे स्पेंड करूँगा, मैं 2,000 रुपये घूमने पे स्पेंड करूँगा, मैं 2,000 रुपये कपड़ों पे स्पेंड करूँगा। वैसे 2,000 रुपये के कपड़े आ जाते हैं क्या? आ तो सकते हैं अगर ढूंढा जाए तो। खैर वापस आते हैं मुद्दे पे, और वो यही है कि आप लोग क्या हो, आप प्लान करते हो चीज़ों को या फिर आप इम्पल्सिव बायर हो? इम्पल्सिव बायर मीन्स ये अच्छा लग रहा है खरीद लेता हूँ या खरीद लेती हूँ। काफ़ी बार ऐसी तो करते लोग, और जब मैं ऐसा करता हूँ ना तो फिर पता है क्या होता है, घर पे सामान आएगा, डिलीवरी वाले भैया लेकर आएंगे, उसके बाद मेरे मम्मी पापा के ताने शुरू हो जाएंगे कि ये देखो खर्चा करना आता बस इसको, पैसे आए नहीं कि उड़ाना शुरू। तो आप मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होगा, होता होगा ना। सैलरी आती है आपका पहला एक्सपेंस क्या होता है ये बताओ पहले तो मुझे। नंबर है जी 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना जो कि नॉस्टैल्जिया दे जाएगा, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए, इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट वॉट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डिम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू फोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

अगर आप लोग फरीदाबाद में रहते हो तो आप लोग एक चीज से तो जरूर परेशान होंगे और वो है कूड़ा और कचरा। लोग नहीं मान रहे हैं और ये लोग कौन है? हम ही तो हैं और कौन है। स्वागत है जी सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड बंदा आप सभी के साथ। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हमने तो कभी नहीं फेंका, हमने कभी कूड़ा नहीं फेंका इधर, हमने कभी कूड़ा नहीं फेंका उधर, बट आप लोगों ने देखा तो है कूड़ा फेंकते हुए किसी को, तो लड़ोगे क्या उससे? नहीं लड़ सकते उससे। आप लोग उसको बस समझा सकते हो कि भाई साहब देखो ये जगह वैसी इतनी सुंदर, आप इसको और सुंदर क्यों कर रहे हो? क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है अगर हम लोग उसके लिए मतलब उससे जाके बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हो तो वो लड़ने आ सकता है, मगर अगर हम लोग उसको शाबाशी देंगे शायद हो सकता है उसके अंदर एक गिल्ट पैदा हो जाए। हम लोग शाबाशी देंगे, अरे वाह क्या बात है आपने इस जगह को और चार चांद लगा दिए कूड़ा फेंक कर, तो हो सकता है वो अगली बार से ऐसा नहीं करेगा और हो सकता है वो आपसे लड़ने भी आ जाए, बट लड़ाई हमें नहीं करनी है। और मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि देखो पूरा फरीदाबाद अपना है, पूरा इंडिया अपना है, ये ज़मीन हमारी है, तो हम लोगों की ही जिम्मेदारी है कि हम लोग इसको साफ रखेंगे और स्वच्छ रखेंगे। तो स्वच्छ फरीदाबाद, स्वस्थ फरीदाबाद। बस इसी के साथ साथ बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग कूड़ा इधर उधर मत फेंकिए, सरकार अपना काम कर रही है, हो सकता है डिले हो रहा हो बट काम हो जाएगा। फिलहाल रेडियो महारानी पर एक गाना चला रहा हूँ आप लोगों के लिए, वापस आकर और भी ढेरों बातें होती रहेंगी मेरे दोस्त।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

जूठी रानी, जूठी रानी ये गाना और मतलब गाने का नाम है गल सुन। सुनिए रेडियो महारानी 89.7 सुन पर एक गल, मतलब गल ये है कि देखो टाइम हो गया है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरे यहाँ से जाने का, तो मैं निकलता हूँ 8 बजे तक। 8 बजे पंच आउट करूंगा, पंच इन तो सुबह होता है ना, तो पंच आउट करूंगा और मैं निकलता हूँ यहाँ से। मगर निकलने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग फरीदाबाद के किसी भी अगर हिस्से में रहते हो और अगर आप लोग कहीं पर भी कूड़ा जमा हुआ देखते हो तो आप लोग उसकी फोटो ले सकते हो और फोटो लेकर आप सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए, और सोशल मीडिया पर जब आप अपलोड कर रहे हो तो आप टैग कीजिए MCF को ताकि वो लोग भी वहां पर आके सफाई कर सके। और इसी के साथ साथ MCF की भी ऐप है, स्वच्छता ऐप है एक और अलग से, तो आप इन ऐप्स को भी ट्राई कर सकते हो। इन ऐप्स को भी खोल के इनकी फोटो खींचिए आप इन जगहों की और ट्राई करो कि क्या पता कल को गंदगी साफ ही हो जाए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए गाने चला रहा हूँ और मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगा आप सभी से फिर से कब यार, रोज तो आता हूँ मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 8, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रहेगा तो निकम्मा ही।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए। शाम
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

गया। इसी गाने के साथ स्वागत है, शोले कर आ गई हूँ इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। आप जल्दी से आ जाइए मेरे साथ ताकि बहुत सारी बातें आप तक पहुँचा पाऊँ। और आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ है फराज। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए ना, फराज के नगमे यहाँ पर मैं कुछ छेड़ने वाली हूँ, कुछ उनकी बातें जो वो कह गए, उनकी बातें दिल से निकली और लोगों के दिल तक सीधा पहुंच गई। ऐसी ही बातें मैं आपके दिल तक पहुंचाऊंगी। और फराज की बात हो रही है और उनकी वो बहुत ही खूबसूरत सी शायरी मैं आप तक ना पहुंचा पाऊं कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। और बहुत ही गहरी बात कह दी है फराज ने इस शायरी के थ्रू। वो कहना चाहते हैं कि अक्सर हम जिन अच्छे लोगों को सोचकर उनके पीछे भागते हैं और सोचते हैं कि यार ये इंसान बहुत खूबसूरत है, जैसा बाहर से दिखता है तो शायद अंदर से भी वैसा होगा। लेकिन यहाँ फराज कहना चाहते हैं कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। हो सकता है कि जो खजाने आप ढूंढना चाहते हैं, जो किसी इंसान की इंसानियत आप ढूंढना चाहते हैं, वो आपको खराबों में मिल जाए। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप ढूंढ किसे रहे हैं। फराज की बातें चल रही हैं और फिलहाल वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत। फराज के बारे में बातें चल रही हैं, उनकी खूबसूरत शायरी जो मुझे लगता है हम लोग आए दिन सुन ही लेते हैं, और आजकल तो इंस्टाग्राम पर शायरी का जो एल्गोरिथम आया है ना वो बहुत खास है। चलिए कम से कम हम वो पुरानी शायरियों से तो रूबरू हो रहे हैं। तो इसी बात पर ना मुझे फराज की एक बहुत ही खूबसूरत सी शायरी याद आई है कि जहां के शोर से घबरा गई क्या, तुम अपने घर को वापस आ गए क्या। यहां कुछ आशना सी बस्तियां थी, जंजीरों को समंदर खा गए क्या। ना थी इतनी कजा ताजा मुसाफत, पुराने हम सफर याद आ गए क्या। मेरी गर्दन में बाहें डाल दी हैं, तुम अपने आप से उकता गए क्या। यानी कि फराज इस शायरी में कहना चाहते हैं जो इंसानियत, शायद ये हमारे जितने भी शायर थे और जितने भी कवि थे ना, इनको पहले से ही पता था कि आगे क्या होने वाला है, और ये शायरी में यही कहना चाहते हैं कि इंसानियत कैसे गायब हो जाएगी इंसानों से, कि यहाँ कुछ आशना सी बस्तियां थी, जंजीरों को समंदर खा गए क्या। और ऐसी ही बातें जारी रहेंगी, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत। अगला गाना है

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो है इश्क बाजियां। मैं हूं इश्क वाली गीत, और फराज की बातें चल रही हैं, फराज की बातें चल रही हैं, और फराज की वो शायरी मुझे याद आ रही है यहाँ पर, स्पेशली इस फिल्म के टाइटल को टच करती हुई वो शायरी है। जब कोई इंसान आपको बहुत टाइम बाद मिलता है ना, और वो ऐसी सिचुएशन होती है जब आप उस इंसान को अपना नहीं पाते हैं, और अक्सर आपके दिल में ये बात रह रहकर आती है कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, क्योंकि तू बहुत देर से मिला है मुझे। तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का भी हौसला है मुझे। दिल धड़कता नहीं टपकता है, कल जो ख्वाहिश थी आबला है मुझे। हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। और फराज ने इस बात के थ्रू ना उन हजारों लोगों को एक कड़ा तंज कसा है, जो बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि उनकी जिंदगी ना मेला है, बस उन्हें लोग ही लोग चाहिए। और यहाँ वो कहना चाहते हैं कि हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, उन्हें सिर्फ एक हम सफर चाहिए, पूरा एक मेला नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। एक मुसाफिर जो है, एक जो इंसान है, वही मेरे लिए जिंदगी भर के लिए काफी है। तो फराज की खूबसूरत बातें चल रही है। फिलहाल वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे शो है इश्क बाजियां।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: क्या आपको पता है कि फेसबुक पे आपके रिलेटिव से ज्यादा खतरनाक सिर्फ एक ही चीज है और वो है हैकर्स। तो उनसे प्रोटेक्शन चाहिए तो कुछ मेजर्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहले बात करते हैं पासवर्ड की। लेट मी गेस, आपका पासवर्ड क्या ही होगा? पासवर्ड 123 या फिर 12345? अरे भाई, तुम्हारा पासवर्ड इतना वीक है कि मेरी नानी भी गेस कर ले। तो सबसे पहले अपना पासवर्ड ऐसा बनाओ जैसे अपने क्रश को प्रपोजल लेटर लिख रहे हो, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और अनप्रिडिक्टेबल। याद रखो दोस्तों, रहो स्मार्ट बनो और फेसबुक पे बॉस रहो।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ इश्क वाली गीत और बातें चल रही हैं फराज की। और फराज की एक शायरी अभी मैं पढ़ रही थी और मुझे ना इस शायरी से वो बात याद आई कि जब दो लोग साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे के लिए बदल जाते हैं, होता है ना अक्सर हमारी जिंदगी में, ये बात मुझे लगता है हर किसी के साथ हो ही जाती है, जब वो जमाने के लिए नहीं बदलते एक दूसरे के लिए बदल जाते हैं और एक दूसरे से नजरें मिलाते नहीं हैं, नजरें बचाते हैं। इसी बात पर लिखा है फराज ने कि दुख छुपाए हुए हैं हम दोनों, जख्म खाए हुए हैं हम दोनों, तू कभी चांदनी थी और धूप था मैं, अब तो साए हुए हैं हम दोनों, जैसे एक दूसरे से शर्मिंदा सर झुकाए हुए हैं हम दोनों, जैसे एक दूसरे की चाहत को अब भुलाए हुए हैं हम दोनों। इश्क कैसा कहां का अहद फराज, घर बसाए हुए हैं हम दोनों। जब दो लोग एक दूसरे से ही अजनबी हो जाते हैं, इस पर फराज ने बहुत ही खूबसूरत सी शायरी लिखी है। ऐसी ही कुछ बातें और मैं आपको बताने वाली हूं, लेकिन अभी वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

विशाल मिश्रा की खूबसूरत आवाज में ये गाना है और देखिए गाने का टाइटल भी खूबसूरत है और फराज की जो ये अगली शायरी है ये भी खूबसूरत है क्योंकि इन्होंने खूबसूरत किसी शख्सियत के लिए लिखा है जिनसे शायद या तो ये प्यार करते थे या किसी के लिए भी इन्होंने लिखी है कि सुना है लोग उसे आंखें भर के देखते हैं सो कुछ दिन उसके शहर में ठहर के देखते हैं, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं, सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, सुना है रात उसे चांद तकता रहता है सितारे उसे फलक से उतर के देखते हैं, सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को उसे जुगनू ठहर के देखते हैं, सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं सो हम बहार पे इल्जाम धर के देखते हैं, सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कुतर के देखते हैं, रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं।

गाना है फिल्म चलती का नाम गाड़ी से और गाना है किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत आवाज में। और इसी गाने के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ शो इश्क बाजियां में हूँ इश्क वाली गीत। और अब समय है रेट्रो इश्क का, जहां मैं लेकर आई हूँ आज एक और ही बहुत ही खूबसूरत सी प्रेम कहानी, उस जमाने की प्रेम कहानी। बॉलीवुड में तमाम प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनको उनके रिश्ते की मुकम्मल मंजिल मिल गई, वहीं कुछ प्रेम कहानियां ऐसी हैं जिनकी दास्तान अधूरी रह गई, जिनका अंत बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो जो मेमोरीज क्रिएट हुई ना वो बहुत अच्छी थी। तो इन्हीं यादों को आप तक पहुंचाती हूँ रेट्रो इश्क के जरिए। और आज एक ऐसी ही लव स्टोरी लेकर आई हूँ कि जिन्हें प्यार हुआ, इकरार हुआ और मंजिल भी नहीं मिली। ये बहुत ही खास सी लव स्टोरी है जिससे आज आपको रूबरू कराऊंगी, लेकिन अभी वक्त गाने का है, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक, लता जी और किशोर दा की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। देखिए, जब किसी की याद आती है और ये पुराने गाने जब हम सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो इतनी सारी यादें इकट्ठी हो जाती हैं, इतने सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे होते हैं। और ये क्या जमाना था ना, जहां प्यार इशारों में हुआ करता, अगर किसी से इश्क हो तो वो आंखों से ही पता चल जाता, अगर किसी से कोई बात कहनी हो तो वो इशारों में ही हो जाती। और हाँ, जहां किसी को दिल की बात कहने में, इजहार इश्क करने में बहुत वक्त लगता, पहले उसे समझा जाता, फिर खतों के जरिए उस तक अपनी बात पहुंचाई जाती, और फिर ये भी देखा जाता कि हाँ, क्या उसे भी उतना ही इश्क है। क्या खूबसूरत सा जमाना था ना ये, जहां किशोरदा के, रफी साहब के, लता जी की आवाज में बहुत खूबसूरत से गाने होते और किसी को ये गाने डेडिकेट भी किए जाते। उसी रेट्रो वाले जमाने की, उसी रेट्रो इश्क की बातें होंगी यहाँ पर। अभी वक्त है गाने का, शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली।

कुछ अनसुनी कहानियाँ मिलती हैं गलियों से, कुछ जज्बात भरी अनोखी निकलती हैं दिल से। फरीदाबाद की गलियों में सिर्फ रास्ते नहीं, कहानियाँ भी बसी हैं। कहीं एक पुरानी हवेली अपनी कहानी सुनाने को बेकरार है। तो कहीं एक नया स्टार्टअप का सपना पंख फैला रहा है। हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखी जा रही है और हम लेकर आए हैं वही कहानियाँ जो इन गलियों से निकलती हैं और सीधा आपके दिल तक पहुँचती हैं। तो सुनिए फरीदाबाद की गलियों से, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: शुरू हो जाओ।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: कर रहा हूँ।
0: तो करना।
1: इरशाद तो बोलो।
0: इरशाद।
1: हाँ, पानी से नहाकर निकलते हैं, पसीना भिगा देता है।
0: अरे रे।
1: अरे पानी से नहाकर निकलते हैं तो पसीना भिगा देता है, एसी कूलर वाला हमें देखकर शटर गिरा देता है।
0: मारी हरकतें जानता होगा।
1: अबे पूरा सुनो पहले। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। पैसे निकालने के बहाने एटीएम में ठंडी हवा खाने घुस जाते हैं। अंदर सोया हुआ गार्ड हमें थप्पड़ मार के भगा देता है।
0: आप डिजर्व भी यही करते हैं।
1: अरे
0: आप तू बोलता रहे भाई, हम

कुछ वादे सच्चे होते हैं लेकिन ये वादे ताउम्र निभाए जाएं ऐसा हो नहीं पाता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसे मंजूर नहीं होती हैं और ये रिश्ते, ये जो मोहब्बत होती है, ये अक्सर अधूरी रह जाती है। गाना है फिल्म हम किसी से कम नहीं और गाना है पूर्णिमा और रफी साहब की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क में आज बातें होने वाली है एक उस जमाने की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। और जैसे कहते भी हैं कि जो सच्ची मोहब्बत होती है वो अक्सर अधूरी रह जाती है, और ये अधूरी मोहब्बत थी राज कपूर साहब और नरगिस की। वैसे दोनों की रियल लाइफ में तो बहुत ही अच्छी जोड़ी थी, बहुत ही सुपर हिट जोड़ी थी। इवन लोगों को ये जोड़ी इतनी ज्यादा पसंद आई कि लोगों ने बैक टू बैक फरमाइशें की इस जोड़ी को ऑन स्क्रीन देखने की। असल जिंदगी में भी उतनी ही जोड़ी ये एक दूसरे के लिए परफेक्ट थी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों कभी साथ नहीं रह पाए। इनकी स्टोरी भी ना बिल्कुल फिल्मी स्टोरी जैसी है। इस स्टोरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है गाने का। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली की।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स एक प्याली सुकून। ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर है। धूप इतनी तेज कि आम का अचार बिना धूप में रखे ही बन रहा है और सड़क इतनी गर्म कि चप्पल भी इमरजेंसी मैसेज भेज रही है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल में कौन है? वो जो बोल नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद से देख सकते हैं।
1: लेकिन टेंशन लेने का नहीं, सॉल्यूशन देने का टाइम है। एक बोल पानी रखो और किसी की प्यास का कूलिंग सिस्टम बन जाओ, क्योंकि एसी तो घर के अंदर है पर इंसानियत हर जगह होनी चाहिए।
0: रेडियो महारानी 89.6 एफएम कहता है, गर्मी से लड़े या ना लड़े, लेकिन प्यास से लड़ने के लिए एक कदम जरूर बढ़ाएं और इंसानियत का फर्ज निभाएं।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां। मैं हूं इश्क वाली गीत और सेगमेंट है रेट्रो इश्क। बातें चल रही हैं राज कपूर साहब और नरगिस की अधूरी लव स्टोरी के बारे में। एक ऐसा इश्क जो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उस इश्क में एक अलग सी बात थी। ये इश्क बेपनाह था। वैसे हिंदी सिनेमा में कई प्रेम कहानियां बहुत फेमस हुई जिनके आज भी चर्चे होते हैं। उन्हीं में से ये जोड़ी थी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त की। इनकी दास्तान बहुत ही खूबसूरत है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर भी प्यार से ये दिल भला क्यों डरा। ये गाना दोनों पर एकदम फिट बैठता है। दोनों के बीच बेपनाह प्यार था, फिर भी ये दास्तान कभी पूरी नहीं हो पाई। राज कपूर और नरगिस की सुपरहिट जोड़ी ने कई हिट फिल्में दी। रियल लाइफ में भी दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत किया करते, पर किस्मत को दोनों का साथ मंजूर नहीं था। और इन दोनों की केमिस्ट्री तो वैसे फिल्मों में गानों में भी दिखाई देती थी। और जब इनकी पहली मुलाकात हुई, उस वक्त नरगिस हिंदी सिनेमा में काफी अच्छी एक्ट्रेस बन चुकी थी। इन दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी बहुत अलग है और बहुत ही खास है। दरअसल राज कपूर मिलने गए थे नरगिस की माँ से, लेकिन दरवाजे पर सबसे पहले इनकी नजर जब पड़ती है नरगिस पर, तो ये उन्हें देखते रह जाते हैं और अपना दिल हार जाते हैं। और इसे कहते हैं पहली नजर की मोहब्बत, जहाँ ये इस कदर अपना चैन खो देते हैं कि ये दोस्ती कर लेते हैं नरगिस के साथ, और ये दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। तो इस तरह से इनकी पहली मुलाकात होती है। और इसके बाद दोनों ने काफी सारी फिल्में एक साथ की। बरसात के बारे में अगर बात करूं, 1949 में जो आई थी, उसके बाद प्यार, आवारा आशियाना, पापी, श्री 420, चोरी चोरी, बहुत सारी फिल्मों में ये एक साथ नजर आए। और मैंने कहा ना, उस टाइम की बहुत डिमांडिंग जोड़ी थी ये। और आज इसी जोड़ी के बारे में बातें चल रही हैं। फिलहाल वक्त है गाने का। शो है इश्क बासियां। मैं हूं इश्क वाली।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

गाना है फिल्म चुपके चुपके से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है रेट्रो इश्क, जहां बातें चल रही हैं रेट्रो की बहुत ही फेमस जोड़ी राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में, जहां नरगिस से पहली नजर का प्यार हो जाता है राज कपूर साहब को और वो उनके प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो जाते हैं। राज कपूर साहब उस वक्त शादीशुदा थे, इतना ही नहीं उनके बच्चे भी थे और ये बात नरगिस को भी पता होती है, लेकिन इसके बावजूद वो भी प्यार कर बैठती हैं राज कपूर से और इसके बाद हर बार वो राज कपूर के साथ फिल्मों में आने लगती हैं और हर फिल्म उनकी हिट हो जाती है और दोनों ऐसे ही बैक टू बैक बॉलीवुड को बहुत हिट फिल्में दे रहे थे। उस दौरान इन दोनों को बॉलीवुड के क्लासिक कपल भी कहा जाता, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है और 9 साल के एक रिश्ते में रहे जहां नरगिस ने राज कपूर का इंतजार किया 9 साल, शादी भी करना चाहती थी लेकिन राज कपूर चाह कर भी उनके पास लौट कर ना आए और इस तरह से ये जो मोहब्बत थी ये इश्क की कहानी अधूरी रह गई। यहाँ बातें हुई राज कपूर साहब और नरगिस दत्त के बारे में और फिलहाल वक्त है गाने का। शो इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहे, बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचे।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना,
3: और अगर सफर को खूबसूरत है बनाना तो गाड़ी नियंत्रित स्पीड पर ही चलाना।
4: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं इश्क बाजू की दिल दिया गल्ला।

गाना बहुत खूबसूरत है और गाना है फिल्म ऐ दिल है मुश्किल से। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। आपके दिलों की बातें जो हैं वो आप तक पहुंचानी है और आज एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक लेकर आई हूँ दिल दियां गल्ला में। कहते हैं ना कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, और दोस्ती होती भी है तो धीरे धीरे वो दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। और बहुत सारे लोग ना इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यार क्या होता है ऐसा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती प्यार में बदल जाती है, जबकि दोनों के बीच एक बहुत ही थिन लाइन होती है। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी के साथ थोड़ा ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जब आपको उसकी हर बात से फर्क पड़ता है, चाहे दोस्ती क्यों ना हो, जब आप उससे अपने दिल की हर बात शेयर करते हैं और सेम सामने से भी वही फीलिंग है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अटैचमेंट्स के जरिए ये दोस्ती जो है वो प्यार में बदल जाती है। इसी के बारे में बातें होंगी, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, अगला गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से हमनवा।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है 3 यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
4: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
5: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
6: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना। रेडियो महारानी 89.6 एफएम सुन रहे हैं आप। शो है इश्क बाजियां और सेगमेंट है दिल दिया कल्ला। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, मैसेज है मेघा का, और ये लिख रही है कि दोस्ती को प्यार में बदलने से कैसे रोका जा सकता है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना कि कुछ फीलिंग्स पर तो आपका कंट्रोल नहीं होता, वो हो जाती हैं और कई बार गो विद द फ्लो आपको भी हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं जरूर आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जनाब वो दोस्ती ही क्या जिसमें प्यार ना हो, ऐसा तो लोग कहते हैं, पर प्यार तो वो हसीन एहसास है ना जो हर रिश्ते में एक अलग सी बात ला देता है। और ऐसा भी लोग कहते हैं कि प्यार मर्जी से नहीं होता, ये हो जाता है। आप मानेंगे नहीं, कई बार अगर आप दिल से एक्सेप्ट कर लेना कि सामने वाले से आपको प्यार नहीं होगा तो यकीनन प्यार नहीं होगा। अगर आपने दिल से ही सोच लिया है कि आपके दिल में है कुछ उसके लिए, तो आप खुद को कैसे रोक पाएंगे। इसलिए अगर आप पहचानना चाहते हैं कि आपको किसी से प्यार है या नहीं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, आप ये देख सकते हैं कि

रास्ते पर ले जा पाए या आपको किसी की याद आती रहती है, तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो मुबारक हो मेरे दोस्त, आप प्यार में हैं। और अब अगर आप प्यार में हैं तो ये पक्का है, पर प्यार जो है वो बहुत से रिश्तों में हो सकता है, जैसे कि दोस्ती का रिश्ता। जैसे कि मेघा का सवाल आया है कि कैसे बचा जाए, तो दिक्कत प्यार में नहीं है, प्यार को समझने में है। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे सिवा तुम्हें और कोई प्यार नहीं करता, तो सामने से ये रिप्लाई आता है कि आपको भी इसी तरह की सेम फीलिंग्स है। तो मेघा, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि दोस्ती में प्यार होता है, लेकिन दोस्ती में और प्यार में एक थिन लाइन होती है। दोस्ती में किसी की केयर होती है, किसी को आप समझते हैं, लेकिन हाँ, जब इमोशंस का बहुत जुड़ाव हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप प्यार की तरफ खिंच जाते हैं। तो आप अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं वाकई में इस प्यार से बचना, और अगर बचना नहीं चाहते तो गो विद द फ्लो। फिलहाल वक्त है गाने का, शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्कवाली की।

संग हूँ तेरे गाना है फिल्म जन्नत 2 से और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां। मैं हूँ इश्क वाली गीत और सेगमेंट है दिल दियां गल्लां और प्यार के बारे में बातें चल रही हैं। ये जो प्यार होता है ना कई बार बहुत अजीबो गरीब माहौल में हो जाता है। आप सोचते रह जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। एग्जाम्पल के लिए किसी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है और उससे आपको प्यार हो जाए, जहां एक दूसरे से आपने बहुत सारी बातें की हैं, रिश्तों पर एक दूसरे को बहुत सारी सलाहें दी हैं, एक दूसरे का मजाक बनाया है पुराने रिश्तों पर, लेकिन आपको एक टाइम बाद एहसास होता है कि आपको तो उसी से प्यार हो गया, बल्कि आपने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, आपके मन में तो कुछ ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ऐसा आपने सोच लिया। और आप फिर ये भी सोचते हैं कि सामने वाले के मन में अगर ऐसी कोई चीज ना हो, ऐसी कोई फीलिंग ना हो, तो खामखाई गलत फहमियां बढ़ेंगी और गलत कदम उठाकर आप उसकी दोस्ती को भी खो दोगे। इसीलिए आप शायद सोचते हैं कि आपको उसकी जिंदगी से अब दूर रहना है या उस इंसान से दूर चले जाना है। और इसमें होता यह है कि एक बहुत ही खूबसूरत सी दोस्ती कहीं खो जाती है, कहीं गायब हो जाती है। तो आपको खोना नहीं है और आपको ये भी जानना है कि सामने वाले को भी उतना ही इश्क है या नहीं है या क्या फीलिंग है, तो इसके बारे में बात करने वाली हूँ शो इश्क बाजियां। मैं हूँ इश्क वाली गीत और गाना है अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहे, बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचे।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
4: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
5: डियरा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो। क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ऑनलाइन दुनिया एक डिजिटल मेला है जहाँ हर चमक सोना नहीं होती, और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं खुद। एक दिन मुझे ऑनलाइन दिख गए कोरियन बूट्स सिर्फ 500 रुपए में, वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। मैंने सोचा क्या कमाल की डील है, तभी तुरंत ही ऑर्डर कर दिया। और फिर जो हुआ, मेरे घर आए सिर्फ 500 रुपए का चूना। बूट्स तो कभी आए नहीं, बस मेरा दिल बोला अलेक्सा प्ले हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स। इसलिए OTP पासवर्ड बैंक डिटेल्स किसी को मत दीजिएगा, और कोई डील ज्यादा ही परफेक्ट लगे तो समझ जाओ स्कैम का जादू चल रहा है रमेश बाबू। अलर्ट रहिए, सेफ रहिए, वरना ऑनलाइन बाजार आपको भी कोरियन बूट्स का चूना लगा देगा।

गाना है फिल्म कभी हाँ कभी ना से, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्कबाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और यहाँ पर बातें चल रही हैं कि जब किसी से दोस्ती हो और वो प्यार में बदल जाए, और आपको ये डर रहे कि सामने वाले को अगर ये बात पता चलेगी तो वो जो खूबसूरत सी दोस्ती है वो भी कहीं ना कहीं खो जाएगी, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको टाइम बहुत कम स्पेंड करना है। अब आप ये सोचेंगे कि गीत ऐसी बात क्यों कह रही है, बल्कि टाइम तो ज्यादा गुजारना चाहिए तभी तो आप समझ पाएंगे। लेकिन नहीं, आपको उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा सा समय अपने लिए बिताना है। ध्यान भटकाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। उनके लिए बहुत इजीली अवेलेबल ना रहे, उनके मैसेजेस का और कॉल्स का जवाब देने में थोड़ा सा टाइम लगाए यार, ताकि आपको भी तो पता चले कि उनको इंटरेस्ट है आप में या नहीं। तो आपकी जो गैर मौजूदगी है वो उन्हें आपकी याद दिलाने वाली है, और उन्हें लगेगा कि आपको ऐसा क्या हो गया कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इस बारे में सोचेंगे। और कहते हैं ना, जो चीज हमसे दूर जाने लगती है हमें तभी उसका ख्याल आता है, और हो सकता है कि आपकी गैर मौजूदगी उन्हें आपके ना होने का एहसास दिला दे, और उन्हें एहसास दिला दे कि शायद आपने उनमें इंटरेस्ट नहीं लिया था, इसीलिए वो कहीं चले गए हैं, कहीं खो गए हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि उनको भी मोहब्बत है या नहीं, और यहाँ दोस्ती भी नहीं टूटेगी और आपको भी पता चल जाएगा। और देखिए, इतनी सारी बातें हो गई हैं सेगमेंट दिल दिया गल्ला में, अभी मेरे जाने का है समय। मैं मिलूंगी आपसे कल जहाँ ढेर सारी बातें होंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM को, छटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: आज सुनकर लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: उम्मीद मेरे दामन में आती है, कुछ को मिल जाती है सांसें यहाँ, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं।
3: तो टेढ़ी मेढ़ी राय, उल्टी पुल्टी बातें,
2: इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: तीर हो।
1: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
2: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं,
3: काम तो वही करेगा।
4: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
4: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
5: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
6: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
7: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
8: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
7: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
8: शायरी पे ध्यान लगाओ।
7: इरशाद,
8: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
7: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
8: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
7: ये बात तो सही है।
8: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
7: कैसे कैसे?
8: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
7: अरे यार, वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
8: सुनो सुनो।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: स्टार्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझे मुझसे मिलाया।

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: I hate water wasting रे। जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 एफएम
4: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: कहा तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: हमको बताओ।
1: काम सीधा साधा है।
0: बोलो बोलो।
1: आज लेना एक वादा है।
0: क्या?
1: आजा आजा, शादी का इरादा है। शादी का इरादा है।
0: शादी
1: का इरादा है।
0: शादी ना पापा ना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं,
0: बाय बाय।
1: सुनो तो, सुनो तो,

0: जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

सजदा है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

मुराया मारे गिल को मुराया उड़े तारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े मुराया मारे गिल को मुराया उड़े तारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रास्ता रास्ता देखो आप मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: याद यही है।
1: ए, क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है। बोलो
0: तौबा तुम्हें एक बात यही है।
1: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है।

0: ना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: डाल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: दीजिए सरकार।
1: सानू थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
3: अच्छा है, अच्छा।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिए। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता।

0: कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज के विचार।
1: जो तुम्हारी अवस्था है, जहां तुम फंसे हुए हो, वहां नाम जप करने लगो। इसमें कोई पैसा नहीं खर्चा होना, इसमें किसी के सहयोग की आपको जरूरत नहीं, इसमें कोई स्वाध्याय की जरूरत नहीं है, इसमें किसी पवित्रता अपवित्रता की बात नहीं है, आपके ऊपर किसी भी तरह के कोई सिद्धांत का शासन नहीं है। जैसे भी हो, जहां भी हो, जो भी हो, बस नाम सुमिरन करना प्रारंभ कर दो। सबसे प्रार्थना है, आप अपने कल्याण के लिए न सही, भगवत प्राप्ति के लिए न सही, पर जीवन चैन से जी सकें, कोई हमारी रक्षा कर सके, कोई हमें सही रास्ता दिखावे, कोई शांति सुख हमारा ना छिन पाए, ऐसा कोई समर्थ तो होना। इस सृष्टि में एकमात्र नाम भगवान समर्थ है। सबसे प्रार्थना है, जहां तक आवाज पहुंच रही हो या यंत्रों के द्वारा जब आपको एक कान में सुनाई दे, एक घड़ी 24 मिनट या दो घड़ी 48 मिनट आप नियम ले लो। 24 घंटे में एक घड़ी का नियम ले लो, 24 मिनट का। हमें न परमार्थ समझना है, न कल्याण, न मोक्ष, न भगवत प्राप्ति, पर हमें चैन से जीना है, इसलिए 24 मिनट नाम जप कर लो। 24 घंटे में बिल्कुल छूट है, 24 मिनट नाम जप कर लो। थोड़ी श्रद्धा बने तो अच्छा, न बने तो कोई बात नहीं, हमारी प्रार्थना मान करके शुरू कर दो। आप देखो, बहुत लोगों से मित्रता करते हैं, उनकी बात मानकर घंटों उनके साथ ताश खेलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अन्य क्रीड़ाएं करते हैं। आप थोड़ी सी मित्रता हमसे भी कर लीजिए, हम हाथ जोड़कर चरण वंदना करके आपके मंगल के लिए, आपके परम सुख के लिए कहते हैं। यदि आप 24 मिनट हमारे करुणा निधान प्रिया प्रीतम का नाम जप कर लिए, तो फिर आप देख लेना परिणाम क्या होगा, महामंगल। अगर एक घड़ी भी आपको ऐसा रुचि ना बैठे, तो आधी घड़ी 12 मिनट, 24 घंटे में 12 मिनट दे दो हमारे प्रभु के नाम के लिए। ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। एक नाम त्रेलु कहीं तारे, जो न ले सो जन्म ही हारे। हमारे प्रभु बहुत कृपालु हैं, लाई के सम भजन को मानत मेरु समान। प्रार्थना मान लीजिए, नहीं तो पछताओगे। कोई तुम्हारा न रिश्तेदार है, न यहां तुम्हारा कोई मित्र है, न यहां तुम्हारा कोई शत्रु है, तुम केवल कमाने आए हो इस मृत्यु लोक में भगवान नाम रूपी धन। पर ठगों ने तुम्हें भ्रमित करके मनोरंजन में फंसा दिया, काम क्रोध की क्रीड़ाएं ये हमारा नाश करती हैं, हम जान नहीं पाते। ये मन बुद्धि ठग का काम हमारे साथ कर रहे हैं। निष्काम होकर के, क्षमावान बन करके, नाम जप करते हुए जो हमें परम पद की प्राप्ति का ये अवसर मिला, हम काम क्रोधाद से युक्त होकर के अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। पर शुद्ध हृदय ना होने के कारण ये बातें आपको समझ में नहीं आती। इसलिए प्रार्थना है, किसी की तो मान ले। ऐसा तो नहीं कह रहे कि आप 8 घंटे पद्मासन लगा के बैठे, 24 मिनट मात्र, 25वां ना बैठना, 24 मिनट आप एक नियम ले लो। जो वृंदावन वास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं है, उनका तो श्वास श्वास समर्पित हो रहा है, नाम रूप लीला धाम चारों समान हैं, वो धामवासी तो निरंतर सच्चिदानंद के संग में है, धाम सच्चिदानंद में है। धामवासी बिना नाम के ज्यादा समय व्यतीत नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ का परमाणु ही ऐसा है, यहाँ की रजरानी की महिमा ऐसी कि उसके अंदर भागवती की स्मरण, कानों में भागवतिक शब्द, नेत्रों में महाभागवत, हरिपार्षद वैष्णवजनों के दर्शन, यहाँ तो सौभाग्य लुटता घूम रहा है, यहाँ तो कल्याण मारा घूम रहा है। हम उनसे प्रार्थना करते हैं जो नाम धाम रूप लीला से विमुख होकर विषयों में रमण करते हैं, वो एक घड़ी हमारे प्रभु के लिए दे दें, फिर वो देखें उनका जीवन कैसा श्रृंगारित होता है। अभी उजड़ा हुआ जीवन है, उजाड़ दिया इन विकारों ने आपको। थोड़े दिन नाम जप कीजिए, फिर ऐसा अनर्थ निवृत्ति होकर रुचि होगी कि आपसे कसम दिलाई जाए कि अब आप नाम जप ना करना, तो भी आप नहीं, कसम का निर्वाह नहीं कर पाएंगे, बिना नाम जप के आप जी नहीं सकते। ये नाम ऐसा अमृत है, ये ऐसा महाअमृत है कि जिसने चखा